सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की

0: अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जहां मातृभूमि का सम्मान है वहीं जीवन का सच्चा अभिमान है। जहां ईश्वर का नाम बसता है वहीं हर मन में प्रेम और विश्वास खिलता है।

0: दीपक बनकर जो स्वयं जले वही औरों को राह दिखाता है। जो प्रभु स्मरण हर पल करे वही जीवन का सत्य पाता है। ईश्वर का नाम मन को शांति देता है, विश्वास देता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने का साहस भी देता है।
1: बैठा है मुश्किलात के

ہم سے قدم چھڑا دے شہ وقار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ وقار کے،

اصغر جگر کو تھام کے کہتی تھی فوج شام، اصغر جگر

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जीवन की हर उपलब्धि ईश्वर की कृपा और हमारे कर्मों का सुंदर संगम है। जब श्रद्धा और कर्म साथ चलते हैं तब सफलता स्वयं मार्ग खोज लेती है।

मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता, कर्मों में सेवा का भाव रहे, प्रभु की कृपा सदा साथ रहे, जीवन हर पल उत्सव रहे। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर अच्छे विचार, हर नेक कर्म और हर सच्ची मुस्कान में भी भगवान का वास होता है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें, माफ कीजिए, आइए अब सुनते हैं चिंतन, आलेख ऐश्वर्या भोसले का और वाचक स्वर रूपाली चौहान का।
1: मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अच्छे विचार मनुष्य के जीवन में प्रकाश की तरह कार्य करते हैं। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और जीवन को सफल तथा सुखमय बनाते हैं। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक और श्रेष्ठ होते हैं, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होते हैं और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अच्छे विचार मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। जब हमारे मन में सकारात्मक सोच होती है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम निराश नहीं होते। जीवन में अनेक बार असफलताएं आती हैं, लेकिन अच्छे विचार हमें गिरकर फिर से उठना सिखाते हैं। वे हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। विचारों का प्रभाव केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे व्यवहार और संबंधों पर भी पड़ता है। अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना रखता है। उसका व्यवहार मधुर होता है और लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बनाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की ओर ले जाते हैं, जिससे जीवन में अशांति बढ़ती है। एक छोटी सी कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि दो भेड़िये हर व्यक्ति के मन में रहते हैं। एक भेड़िया प्रेम, दया, सत्य और अच्छे विचारों का प्रतीक है, जबकि दूसरा क्रोध, घृणा और नकारात्मकता का। शिष्य ने पूछा, इसमें से जीतता

0: कौन है? गुरु ने उत्तर दिया, जिसे तुम अधिक भोजन देते हो, अर्थात जिस प्रकार के विचारों को हम अपने मन में स्थान देते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। अच्छे विचार हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रसन्न और आशावादी व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है, उसका मन शांत रहता है और वह तनाव का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। जब मन शांत और प्रसन्न होता है, तब शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत स्वस्थ विचारों से होती है। महान व्यक्तियों के जीवन में भी अच्छे विचारों की शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के विचारों को अपनाकर पूरे देश को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संदेश दिया। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये दर्शाता है कि एक श्रेष्ठ विचार केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण कर सकता है। अच्छे विचारों को विकसित करने के लिए हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए और सकारात्मक लोगों का साथ चुनना चाहिए। साथ ही हमें अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। नियमित आत्मचिंतन और अच्छे कर्म भी श्रेष्ठ विचारों को मजबूत बनाते हैं। अंततः अच्छे विचार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वे हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमारे जीवन में सफलता और शांति लाते हैं तथा समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। यदि हम अपने मन में सदैव सत्य, प्रेम, करुणा और आशा के विचारों को स्थान दे तो हमारा जीवन स्वयं भी सुखमय बनेगा और हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकेंगे। इसलिए हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे विचार अच्छे हों, क्योंकि विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख ऐश्वर्या भोसले और वाचक स्वर रूपाली चौहान का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। विषय है जैव उर्वरकों के प्रयोग की सावधानियां, आलेख तुलसा दरगैया का।
2: किसान महिनोणी राम राम। किसान महिनोणी, कुछ आशा जीवाणु जो कि पौधा न का साथ असहजीवी रूप में रही न वायुमंडल की नत्रजन का मिट्टी में स्थिर करी दे, जेखा हम जैव उर्वरक कवान मिट्टी में विटामिन अघुलनशील फास्फोरस का घुलनशील रूप में परिवर्तित करने कोई काम करे, जेका सी मिट्टी में पौधा न का लेना नत्रजन न फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ी जाए। ई जैव उर्वरक हमारे लिए रासायनिक उर्वरक से ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावशाली रहे, ये संतुलित न सस्ता रहे, जेका से गरीब किसान भाई भी एक उपयोग में लाई सके। ये पौधा न का नत्रजन न फास्फोरस तत्व न की उपलब्धता में कम खर्च पर भी ज्यादा वृद्धि करे। ये उर्वरक कुछ विशेष हार्मोन न विटामिन भी पौधा न को उपलब्ध कराए, जेका सी बीज न को अंकुरण, जड़ न को विकास न पौधा न की वृद्धि अच्छी हुई। ये उर्वरक वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं कराता, न मिट्टी न मानव का स्वास्थ्य पर कोई विषैलो प्रभाव भी नहीं डालता है। एका अलावा रासायनिक उर्वरक न जो कीटनाशक रहे उसका प्रयोग से जमीन का तत्व न को नुकसान हो। मृदा विशेषज्ञ न का अनुसार सघन पैदावार का कारण मिट्टी में जिंक, तांबो, मैग्नीशियम न बोरान जैसा मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व लुप्त हो जाए। कोई भी सूक्ष्म तत्व की भरपाई करना का लेना शुद्ध रासायनिक रूप से उना तत्व को डालना से मृदा का अन्य सूक्ष्म तत्व न की समाप्ति को खतरो रहे। एक लेना सूक्ष्म खनिज न को खरीदनो भी कठिन रहे। जिंक जैसा तत्व न का डालना में बड़ी सावधानी बरतनो पड़ा, नहीं तो जो मिट्टी रहे जो जहरीली हुई जाए। डाले जिंक को 80-90% भाग ऐसा रूप में परिणित हुई जाए, जिका से पौधा को उपयोग में नहीं लाई सकता। इन्हीं समस्या का समाधान का लेना देसी उपाय का तौर पर प्राकृतिक खाद को प्रयोग करना चाहिए, न फलीदार फसल न का साथ अलग अलग तरह की फसल न भी बोनू चाहिए। कीटनाशक न का प्रयोग से इनका जहरीला अंश अनाज, फल, सब्जी, दूध, जल न मांस मछली जैसा खाद्य पदार्थ न भी पाया जाए। कभी कीटनाशक शरीर में पहुंची जाए तो इसका घातक परिणाम हुई सके। जैव उर्वरकों को प्रयोग करते समय हमको कुछ सावधानी न भी रखनी चाहिए, जैसो कि इनको पैकेट को प्रयोग वच फसल का लेना करा।

0: का लेना है अपन खरीदी न लाया है, ऐसा नहीं कि हम पैकेट से लाई भाई मूंगफली की फसल का लेना लाइया है ना कोई दूसरी फसल पे कोई इस्तेमाल कर ही रहा है। पैकेट खरीदते समय ओका ऊपर ओको नाव उपयोग में लाने की अंतिम तिथि जरूर देखा, अंतिम तिथि से पहले एको हम प्रयोग कर ही लेवा। पैकेट खरीदने के बाद एका में कीटनाशक दवा धूप न गर्मी से बचे न हमें संरक्षित रखा, न केवल प्रयोग का समय खोला जब हमको अपना खेत में प्रयोग करनो जब हमें को खोला। जीवाणु रोधक न का रासायनिक उर्वरक का साथ हमको नहीं मिलानु चाहिए, विशेष करी न यूरिया का फसल की बुवाई न पौधा रोपण का समय हमको नहीं देनु चाहिए, जैव उर्वरक का साथ एक नहीं मिलानु चाहिए। कभी कीटनाशक न सी पहला कीटनाशक न फिर एक सप्ताह पश्चात जैव उर्वरक से उपयोग करी जाए, मतलब हमको ई बात को ध्यान रखा कि अगर हमने जैव उर्वरक डाली रहा तो ओका पहले हमने कोई सो कीटनाशक को प्रयोग तो नहीं करे हुए। कीटनाशक दवा न जैव उर्वरक का साथ बीज उपचार करनु हुए तो पहले कीटनाशक दवा को न फिर ओका बाद फिर उपचार हमको करना चाहिए। पारायुक्त रसायन का बीज उपचार करने पर जैव उर्वरक की दोगुनी मात्रा हमको उपयोग में लानी चाहिए। मिट्टी की जांच हमको जरूर करना चाहिए, कभी मिट्टी अम्ली हो तो जैव उर्वरक से उपचारित बीज न पर तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर बीज की मात्रा अनुसार कार्बोनेट पाउडर न क्षारीय हो तो बारीक जिप्सम पाउडर की परत चढ़ानी चाहिए। बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया सुबह न छायादार स्थान पर करनी चाहिए, न बीज न छाया में सूखे न तुरंत की बुवाई कर देनी चाहिए। उपचार का 24 घंटा बाद तक बुवाई संभव नहीं होने पर फिर से हम जैव उर्वरक से उपचारित कर सका। जीवाणु टीका न प्रयोग का बारे में अपना जो कृषि विशेषज्ञ है उनका से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही हम एक बात ये भी ध्यान रखा कि जैव उर्वरक सुरक्षित करना भी जरूरी है, क्योंकि जैव उर्वरक कभी कोई कारणवश हम उपयोग में नहीं ला पाया हो तो वह सुरक्षित को भंडारण हम कर देवा। एका लेना मट्टी का घड़ा में जैव उर्वरक का पैकेट न रखी न मुख उको मुंडो बंद कर देवा। द्रव शुष्क अंधेरा न छायादार स्थान पर गड्ढा खोदी न इना घड़ा न में दबाई देवा, न एका चारे तरफ 6 से 8 इंच मोटी बालू की परत लगाई देवा। घड़ा का मुख जमीन की सतह से ऊपर रखता हुआ न बालू का समय समय पर पानी से नम रखा। भाई उनका इन्हीं बातों को ध्यान रखांगा जो जैव उर्वरक हम अपना खेत में प्रयोग करी रहा एको हमको घनो फायदा होगा।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था जैव उर्वरकों के प्रयोग की सावधानियां, आलेख और वाचक स्वर तुलसा दरगैया का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंगनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीले झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर रंजना जोगलेकर का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंदौर। इसमें विषय होगा स्तनपान सप्ताह और श्रावण मास। सुबह 8:30 हम आपको सुनाएंगे कंपेयर्ड विशेष फिल्म संगीत, जो आज का प्रोग्राम शकील बदायूनी पर केंद्रित होगा। सुबह 9:00 मराठी कार्यक्रम होगा। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पंडित अरुण भादुड़ी का गायन, राग है नट भैरव। सुबह 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है 11:58 पर। इस घंटे की खास खबरें 12:58 पर और 2:58 पर। 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। 12 बजे फिल्म संगीत और 12:30 बजे संग्रहालय से। 1 बजे होगा स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत का प्रोग्राम और 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत। 2 बजे होगा फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत हम लेकर आएंगे। शाम 5 बजे युवाणी में युवा साथी सुनेंगे। आरंभिक चर्चा में मैथिली शरण गुप्त जयंती पर चर्चा, साथ ही राष्ट्रीय तरबूज दिवस के बारे में जानकारी आप सुनेंगे। आज के क्रम में जानिए कुछ बातें कुछ गीत। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आपको सुनवाएंगे। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार हैं कपिल पुरोहित और साथी। शाम 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:20 पर होगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 8:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर हम लेकर आएंगे चित्रगीत और 9:30 बजे पब्लिक स्पीक हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे होगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में सुनिए गौरी पराड़े का गायन। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोता, हम आपको याद दिलाते हैं सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन और सुबह 8:30 सुनिए शकील बदायूनी पर विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और संस्कृत समाचारों के बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः मानसिकरूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं

0: केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारंभानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शत सप्ताहकात्मकं अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत

0: करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की।
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओं आपको याद दिला दें, सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसके फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो सुनना ना भूले MH हॉटलाइन प्रोग्राम, और आप खुद फोन लगाइए और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, और सुबह 8:30 सुनिए विशेष कम्पेयर्ड फिल्म संगीत का प्रोग्राम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, नशा मुक्त युवा से ही बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प दिलाया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की आज मतगणना, नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से किया बाहर। और उज्जैन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए युवाओं का तन मन से स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल काशी से शुरू हुआ था और अब ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प अगले 100 दिन तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान

0: अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बैरट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उपस्थित युवाओं तथा नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अगले दिन वे दक्षिणी ओडिशा के तप्त पानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 35 एकड़ में बना यह विद्यालय करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालय गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की असमानता खत्म करने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास है। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की। श्री यादव ने कहा,
1: इस विद्यालय का लोकार्पण ये नए इतिहास का गढ़ना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात। आज देश बदल रहा है, अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे तक डाकपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार राजेंद्र भारती पर चुनावों में भीतरघात करने का आरोप लगा रहे थे। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी दोपहर 3:30 बजे पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। मंदिर प्रशासन प्रथम कौशिक ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए चलित आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है और 15 जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात अच्छी खबर की। खरगोन जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। इससे मिर्च को कानूनी संरक्षण, वैश्विक पहचान और किसानों को बेहतर दाम और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
3: कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। GI टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर दाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
4: हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
5: एक जिला उत्पाद के तहत मिर्च को ही खरगोन के लिए रखा है, तो इसको GI टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा और साथ ही इसके लिए उद्योग भी लगेंगे।
3: इधर उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक के गिरवाल का भी मानना है,
6: हमारे जिले की मिर्च लाल मिर्च को एक नई पहचान मिली है। इसकी पहचान बढ़ने से इसका मूल्य जरूर बढ़ेगा और यहाँ पर बाहर से भी खरीदार आएंगे।
3: GI टैग खरगोन की लाल मिर्च की पहचान का नया अध्याय है। यह सम्मान न केवल खरगोन की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि हजारों किसानों की मेहनत को उसका वास्तविक मूल दिलाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: प्रदेश

भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो तय कोटे की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 15% कम बारिश दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिन के 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए युवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के 300 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदापुरम में भिलाड़िया घाट से कांवरिये नर्मदा जल लेकर सिवनी मालवा होते हुए आज तिलक सिंदूर पहुंचेंगे। अशोकनगर में कल श्री शिवटोरिया और ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में 2100 पौधे लगाए गए। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में आज आईटीआई में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में नशा मुक्त भारत विकसित अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर, प्रस्तुति प्रीति जोशी की।

जी हाँ श्रोताओं, सावन यानी प्रकृति का मुस्कुराता हुआ मौसम, रिमझिम फुहारों का संगीत, हरियाली की चादर, झूलों की मधुर झनकार और शिव भक्ति में डूबा आस्था का अनुपम उत्सव।

यह महीना केवल वर्षा का नहीं बल्कि मन की पवित्रता, प्रेम, उल्लास और नई ऊर्जा का भी प्रतीक है। सावन केवल ऋतु नहीं है श्रोताओं, प्रकृति और श्रद्धा का सुंदर संगम है, जहां हर बूंद जीवन का संदेश देती है और हरियाली जीवन में खुशियों का रंग भर देती है।

सावन के रिमझिम फुहारों के बीच जब मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि और ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजता है तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। तब हर हृदय में श्रद्धा, उमंग और उत्साह का नया संचार होता है।

श्रोताओं, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, तो श्रद्धा से अपने मन को शिवमय करें और महादेव का स्मरण करें।

0: श्रोताओं, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, तो आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बहुत सारी बातें होंगी श्रावण मास की और स्तनपान सप्ताह की। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास की। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्य पुजारी श्री गणेश मंदिर खजराना इंदौर से श्री अशोक भट्ट जी। गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जय गणेश। जय गणेश।
0: जय गणेश। पुजारी जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि श्रावण मास को इतना पवित्र महीना क्यों कहा जाता है?
1: भगवान शिव जी का ये पवित्र महीना है और भगवान हम शिव जी की स्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर के समान उज्जवल और गोर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार है, संसार के सार है और सर्पों का हार धारण करते हैं, वो भगवान शिव माता पार्वती के साथ मेरे हृदय कमल में सदैव निवास करे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो यह श्रावण मास जो होता है, यह पवित्र महीना भगवान पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है
0: जी।
1: इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल पान किया था, उन्होंने विष का प्याला पिया था। इसके अलावा माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया था।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे आपसे कि श्रावण मास का नाम श्रावण कैसे पड़ा?
1: श्रावण इसलिए पड़ा कि हमारे जो भारतीय पंचांग है उसमें हिंदू महीने के जो नाम रखे जाते हैं वो नक्षत्र के हिसाब से रखे जाते हैं
0: जी।
1: श्रावण महीने में जो नक्षत्र रहता है वो श्रवण नक्षत्र रहता है पूर्णिमा के दिन, तो श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होने के कारण इसका नाम श्रावण मास पड़ा हुआ है।
0: 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयं प्रकट हुए साक्षात तेज और प्रकाश पुंज है। सावन में इनके दर्शन और जलाभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हमारा जो

0: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों में दक्षिण मुखी शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि महाकाल मृत्यु और समय के देवता है और हमारे महाकाल में महाकाल जी की सवारी भी प्रत्येक सोमवार को श्रावण मास में निकलती है। राजाधिराज महाकाल इस रूप में दर्शन देने के लिए पूरे उज्जैन शहर में भ्रमण करते हैं और जो व्यक्ति महाकाल के इस रूप के दर्शन करने मात्र से भय रोग और अकाल मृत्यु का योग अगर उसका होता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। पूरे सावन महीने में उज्जैन में वातावरण शिव भक्ति से सारोबार रहता है।
1: जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि सावन के महीने में पूरा जो वातावरण है वो शिव भक्तिमय हो जाता है। इस समय पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बहुत महत्व है तो वो क्यों बनाए जाते हैं?
0: ठीक है, स्वयं शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करने को पार्थिव शिवलिंग पूजन कहा जाता है।
1: जी
0: शिव पुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को सबसे उत्तम और शीघ्र फल देने वाला माना गया है।
1: जी
0: सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से करोड़ों योगियों के समान फल प्राप्त होता है और यह पूजन धन आरोग्य संतान सुख और भूमि भवन के योग्य बनाता है। पूजा के पश्चात इसे पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है जिससे प्रकृति और ईश्वर का तादम्य बना रहता है।
1: जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। आपने कहा था कि भगवान शिव को इस समय जल और बिलपत्र अर्पित किए जाते हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है, उन्हें बिलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है?
0: भगवान जो शिव को जल चढ़ाने का महत्व है कांवड़ यात्रा से भी है। जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और जल को अपने स्थानीय या प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनको जल अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल भरकर पूरा के महादेव को अभिषेक किया था। तभी से सावन के महीने में गढ़ मुक्तेश्वर और हरिद्वार से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा बताते हैं कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने दृष्टिहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। उन्होंने अपने माता पिता को हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कराया और वहीं से जल भरकर शिव जी के लिए भी वो जल लेकर आए और शिव जी का गंगा जल से अभिषेक किया था।
1: जी जी
0: तब से यह परंपरा जीवंत मानी जाती।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। भगवान शिव को बिलपत्र भी अर्पित किया जाता है तो उसका क्या महत्व होता है?
0: बिलपत्र की तीन पत्तियां त्रिदेव रूप में होती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश।
1: जी
0: यह तीन पत्तियां सत रज और तम इन तीनों गुणों का आकार है। यह भगवान शिव की तीन नेत्रों और इनके तीन अस्त्रों त्रियायुध का प्रतीक है। एक बिलपत्र भगवान को अर्पित करने से तीन जन्मों के पापों का नाश होता है ऐसा कहा जाता है।
1: आज श्रावण मास का पहला सोमवार है तो इसका क्या महत्व है ये जरूर हमें आप बताएं।
0: श्रावण मास के सोमवार को भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इस दिन व्रत रुद्राभिषेक और शिव पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने तथा सुख समृद्धि का उत्तम स्वास्थ्य और अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में शुभ फल भी प्राप्त होता है। प्रीति जी श्रावण मास का पहला सोमवार है और सभी श्रद्धालु आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पंचामृत से अभिषेक हो रहा है भगवान शिव जी का, उनको बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं और नाना प्रकार के भगवान को भोग लगाए जा रहे हैं। सभी शिव मंदिरों में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
1: बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है सभी ईश्वर की भक्ति में रमे हुए हैं और महाकाल का आशीर्वाद सभी के ऊपर है।
0: बिल्कुल,
1: इस वक्त बहुत सारे व्रत उपवास भी रखे जाते हैं तो इस महीने में सात्विक भोजन का क्या महत्व है ये जरूर हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
0: प्रीति जी क्या होता है कि सात्विक भोजन मन को शांत और पूजा पाठ के अनुकूल बनाता है, जबकि तामसिक भोजन जो होता है मन में चंचलता और काम क्रोध को बढ़ा देता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। सावन में वर्षा ऋतु के कारण पाचन तंत्र धीमा और कमजोर हो जाता है, भोजन पचाने में कठिनाइयां होती है जिससे बीमारियों होने का खतरा रहता है। सात्विक भोजन हल्का और शरीर को स्वस्थ रखता है इसलिए सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यह महीना अत्यंत ही धार्मिक भाव का है और हमें यह सावन महीने में जितना हो सके भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए या अगर पूरे महीने नहीं रह सके तो सावन महीने के जो सोमवार होते हैं उस दिन व्रत और उपवास करना चाहिए और भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, उनको बिल पत्र अर्पित करना चाहिए।
1: पुजारी जी अब हम आपसे आपकी पसंद का एक गीत जानना चाहेंगे जो इस खास मौके पर आप सुनना चाहें।
0: प्रीति जी मैं चाहता हूँ कि केदारनाथ फिल्म का नमो नमो शंकरा का गीत सभी श्रद्धालु भक्तों को सुनवाए क्योंकि आज महाकाल का दिन है, आज शिव जी का दिन है और आज भक्तों को ये गीत अवश्य सुनाए।
1: जी जी जी बहुत अच्छी फरमाइश आपने की है। लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का। ये गीत आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है, क्योंकि स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हम मना रहे हैं, तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निवेदिता दशोरे। आइए उनसे बातचीत करते हैं।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
2: गुड मॉर्निंग इंदौर। मैं डॉक्टर निवेदिता दशोरे, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ।
1: नमस्कार डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार प्रीति जी।
1: निवेदिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विश्व स्तनपान सप्ताह अभी हम मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है और इसे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
2: प्रीति जी, स्तनपान वैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया अवश्य है,

0: परंतु कई बार नई माताओं को सही जानकारी नहीं होने से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चा चलना तो सीख जाता है, परंतु फिर भी हम उसे हाथ पकड़कर रखते हैं। उसी प्रकार इन माताओं को परिवार की, समाज की और अस्पताल के सहयोग की जरूरत होती है। सही जानकारी के अभाव में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और WHO के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग को स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना गया है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें ये सप्ताह मनाने की आवश्यकता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे कि जन्म के बाद बच्चे को कितनी देर के भीतर पहला स्तनपान कराया जाना चाहिए?
0: पहला स्तनपान 30 मिनट आफ्टर डिलीवरी, मैंने 30 मिनट के बाद ही चालू कर देना चाहिए, और पॉसिबल हो तो 1 घंटे के अंदर। इसको गोल्डन आवर कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे को हम माँ के एब्डोमेन पे रख देते हैं और फिर कॉर्ड कट करके बच्चे के डॉक्टर को देते हैं। और इसी तरह जैसे ही बच्चा स्टेबल हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग लेबर रूम में ही करवाते हैं। सिजेरियन के समय जैसे पेशेंट स्टेबल है, तो हमारे मेरे ख्याल से इंदौर के सभी स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक स्पेशल नर्स OT में रखते हैं। जैसे ही बच्चा और माँ स्टेबल हुए तो OT टेबल पे ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवाते हैं।
1: जी, आजकल कई भ्रांतियां भी है कि पहला जो गाढ़ा पीला दूध होता है माँ का, वो नहीं पिलाया जाता है, कई जगह उसे फेंक दिया जाता है, तो इस तरह की भ्रांतियों के लिए आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल गलत है। हल्का पीला गाढ़ा जो शुरुआती दूध निकलता है, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें रोग और संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडीज और अन्य सुरक्षात्मक तत्व बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं।
1: जी
0: ये बच्चे की आंत को भी सुरक्षा प्रदान करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की मजबूत नींव रखता है।
1: जी
0: तो इसको प्राकृतिक टीका भी कहते हैं या पीला सोना भी कहते हैं। तो बच्चे को पहला दूध अवश्य देना चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी नवजात शिशु के लिए माँ का जो पहला दूध है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
0: जी, जरूर, बिल्कुल।
1: स्तनपान कराने से माँ और शिशु दोनों को क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, इस विषय में जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: बच्चे को एक सुरक्षित, स्वच्छ, आसानी से पचने वाला आहार मिलता है, और ये आहार उसकी उम्र के हिसाब से बदलते जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो माँ की ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क में भी काफी चेंजेस आते हैं और वो उसकी आवश्यकता के अनुसार बदलते जाते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग लेने वाले बच्चों को संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है, जैसे उल्टी, दस्त और सांस का जो संक्रमण होता है, इनकी संभावना बहुत कम होती है। और जो एंटीबॉडीज माँ के दूध में रेडीमेड मिलती है बच्चे को, उससे बच्चे को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में बहुत लाभ मिलता है।
1: और माँ के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है फीडिंग करवाने से?
0: जी, एक बच्चे के लिए मैं और भी बताना चाहूंगी, उसका भावनात्मक जुड़ाव भी माँ से रहता है। और माताओं के लिए यूट्रस के आकार को सामान्य लाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट उपाय है, ये यूँ कहना चाहिए। दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव भी बच्चे और माँ के बीच में होता है, जिसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, ओवेरियन कैंसर होने की संभावना कम होती है, और साथ में डायबिटीज, Type 2 डायबिटीज प्लस उच्च रक्तचाप की भी संभावना और खतरा कम हो जाता है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है निवेदिता जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नई माताएं जो अभी अभी माँ बनी है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो प्रिकॉशंस रखें?
0: नई माताएं परफेक्ट मदर है करके ऐसा दबाव नहीं बनाना चाहिए उन पे, है ना। बच्चा कई बार जो है वो बार बार ऐसा लगता है कि दूध मांग रहा है, हर थोड़ी देर में बच्चा रो रहा है, तो बच्चा हर समय दूध के लिए नहीं रोता है। कभी कभी वो आराम चाहता है, माँ की निकटता चाहता है, इसलिए भी बच्चा रोता है। कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग घड़ी देख के नहीं करना है, ये डिमांड फीडिंग होना चाहिए। बच्चे के भूख के संकेत जो होते हैं वो समझना चाहिए, जैसे बच्चा मुंह चला रहा है, हाथ चूस रहा है, उंगलियां चूस रहा है, या गर्दन घुमा के ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है, ये सब संकेत हैं कि अब वो भूखा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। दूसरा, कई बार जो पहली बार माँ बनी है लेडीज, उनके निपल पर घाव आ जाते हैं, ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने पे होती। मैं इन माताओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि निपल खाली बच्चे के मुंह में नहीं जाता, जो आसपास का पिगमेंटेड एरिया जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो भी बच्चे के मुंह के अंदर जाएगा, तब निपल पर एक्स्ट्रा खिंचाव नहीं पड़ेगा और घाव नहीं आएंगे उसके ऊपर। ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना भी एक कला है। कई बार होता है बच्चा कम यूरिन पास कर रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा बच्चे का, सुस्त है बच्चा, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए
1: जी।
0: और इन माताओं को उनके अपने लिए भी इनको भरपूर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पानी भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, पानी और तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में वो सूप ले सकती हैं, पतली दाल ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, बहुत सारी चीजें। ये सारा मतलब कम से कम 5 से 5.5 लीटर लिक्विड डेली जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और यदि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही है तो सहायता लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं है
1: जी। आपने एकदम सही कहा कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सलाह मशवरा लेना, उनकी सहायता लेना भी नई माताओं के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें।
0: दादी और नानी का अनुभव जो है बहुत मूल्यवान है, परंतु कोलोस्ट्रम को फेंक देना जैसी पुरानी कई परंपराओं को अब वैज्ञानिक आधार पर हमको हटाना चाहिए और उनको बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी जी। और क्या कहेंगी आप हमारे इंदौर के श्रोताओं से?
0: मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे को आधे से एक घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। शुरू के 6 महीने में बिल्कुल भी पानी देने या शहद और भुट्टी देने की जरूरत नहीं है। माँ के दूध में ही इतना पानी होता है, भले कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो फिर भी पानी देने की जरूरत नहीं है। माँ के दूध में इतना पानी होता है कि वो उसकी पूर्ति कर देता है। दूसरा, जब माताएं डिलीवरी के लिए अस्पताल चूज करती हैं तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वहां पर प्रॉपर नर्सरी और नर्सिंग स्टाफ इतना अच्छा है जो उनको ब्रेस्ट फीडिंग में भी, आजकल तो लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं कई हॉस्पिटल्स में, तो वो भी मदर को ब्रेस्ट फीडिंग में काफी हेल्प करते हैं। और मदर के लिए मैटरनिटी लीव पहले तो 1.5 महीने की होती थी, 6 वीक्स की, पर अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि 6 महीने लीव होती है। परंतु यदि उनको लगता है जरूरत कि वो अपने कार्य पर नहीं जा पाएंगी छोटे बच्चे को छोड़ के, तो चाइल्ड केयर लीव की भी को वो अवेल कर सकती हैं, ले सकती हैं। पर किसी समस्या से वो माँ यदि ब्रेस्ट फीड ठीक से नहीं करा पा रही है तो हमको माँ को डराना नहीं है, उसको सहयोग करना है, उसको दोषी साबित नहीं करना है, उससे और डिप्रेशन आता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी निवेदिता जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के लिए। डॉक्टर निवेदिता जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपकी पसंद का एक गीत हमें जरूर बताएं जो इस खास मौके पर आप सुनना चाहें।
0: प्रीति जी, सावन का महीना चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो आप एक मंजिल फिल्म का गाना है, रिमझिम गिरे सावन।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, आपने हमें समय दिया इसके लिए धन्यवाद। लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं कि श्रावण का महीना उनके लिए किस तरह से खास है। आप अपना नाम बताएं।
2: अंकिता वंसल।
1: अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये बताइए, क्या करती हैं अंकिता जी आप?
2: मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: से जानना चाहेंगे कि सावन का महीना आपको कैसा लगता है?
2: सावन का महीना मुझे बहुत पसंद है। सावन के महीने में छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो उत्सव होते हैं, उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सावन के महीने में हरियाली तीज मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी का मिलन हुआ था और उन्होंने पहले झूले का उत्सव करा था, जो राधा जी झूली थी और कृष्ण भगवान ने उनको झुलाया था। प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बार सावन का पहला सोमवार है, मैंने महाशिव पुराण का आयोजन करा है जो 7 दिन तक चलेगा। उसमें मेरी सखियां बहुत एंजॉय करने वाली है।
1: सखियों के साथ साथ परिवार भी एंजॉय करेगा?
2: जी हाँ, परिवार भी करेगा। उसमें मैंने झूला उत्सव भी रखा है और उसमें शिव विवाह है, पार्वती जन्म उत्सव है, गणेश जन्म उत्सव है, प्रसादी वितरण है, और मैं आज के यंगस्टर से या जो भी मेरी सखियां हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने उपवास रखे हैं तो आप आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आप नारियल पानी पिए, आप फलारी लें, पौष्टिक फल एवं आहार लें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस मौसम में हम व्रत उपवास जरूर करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा अंकिता जी आपसे बातचीत करके। आइए अब बात करते हैं हम आयुषी से।
3: नमस्ते प्रीति जी, मेरा नाम है आयुषी बंसल, मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
1: तो ये बताइए आयुषी, सावन का महीना कैसा लगता है आपको?
3: सावन का महीना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर्टिकुलर प्रकृति जो है उसको इस महीने में एक नया जीवन मिलता है। चारों ओर हरियाली मिलती है, मौसम सुहावना होता है, वर्षा ऋतु जो है वो अपने चरम पे होती है और हमारे मन को बहुत ही शांति और सुखद एक अनुभव जो है ये महीना हमें देके जाता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो इस महीने में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: सावन का महीना जो है वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अवसर देता है कि आप जिस भी वृक्ष का बीजारोपण करेंगे वह तुरंत ही अपने चरम अवस्था में इस मौसम में आ पाता है। और हमें यहाँ पे जल संरक्षण का संदेश भी इस महीने से मिलता है, क्योंकि प्रकृति हमें जल प्रदाय करती है, तो आप उसका संरक्षण करके अपने पर्यावरण को भी संरक्षित इसमें कर सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि इस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। सावन आते ही झूले की एक परंपरा शुरू हो जाती है, खासकर महिलाओं में, तो आप क्या कहेंगी इस विषय में?
3: झूले जो कि सभी लोग इंतजार करते हैं, सावन के झूले, तो इसमें मैं यही बताना चाहूंगी कि झूले जो है वो हमारी लोकगीत, लोक परंपराओं, सबका तालमेल बनाए रखते हैं, क्योंकि हम सखियां होती हैं जिनका कभी कभी मन करता है कि हम बाहर जाएं और सावन का आनंद लें, और इसी में हमारी एक झूले की परंपरा भी जुड़ी हुई है कि हम जो है वृक्ष की टहनियों पर रस्सियों के झूले डालकर उसमें हम झूला झूलते हैं, हमारी सखियां हमें झूला झुलाती हैं। तो पर्यावरण और झूले हमको बहुत ही कनेक्ट करते हैं। हम पर्यावरण का उपयोग कर वृक्षों पर झूले डालते हैं और उन्हें झूल कर हमारे मन को आनंद से भर लेते हैं।
1: क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि झूला झूलना इतना पसंद है और हमारे मन को बहुत ही आनंदित करता है झूला झूलना।
3: प्रीति जी, मैं इस बार आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इंदौर की जितनी भी महिलाएं हैं जो इस वक्त मुझे सुन रही है, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूंगी कि सावन का महीना श्रृंगार के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। हमें कितना अच्छा लगता है ना, हम 16 श्रृंगार इसमें कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है हरी हरी साड़ी पहनना, लहरिया पहनना, हरी चूड़ियां पहनना।

0: खोला श्रृंगार करना, और आप सब भी खूब श्रृंगार इसमें कर सकते हैं क्योंकि श्रृंगार करने का मौका भी होता है। कितने सारे तीज त्योहार है जो ये सावन का महीना अपने साथ लेकर आता है, रक्षाबंधन होता है, हरियाली तीज होती है, हमारी नाग पंचमी होती है, हरियाली तीज स्पेशली वो त्योहार होता है जब एक सास और बहू के रिश्ते का भी बहुत सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। सास अपने बहू को सिंजारे के रूप में 16 श्रृंगार देती है जिसे बहू तीज के दिन पहनकर एक उसका रूप निखरता है और साथ में झूला झूलते हुए वो अपनी परंपराओं को निभाते हैं, सावन के साथ त्योहारों का भी आनंद लेते हैं।
1: क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन करा है सावन का और तीज त्योहारों का। बहुत अच्छा लगा अंकिता जी और आयुषी आप दोनों से बातचीत करके। अब आप दोनों की पसंद का एक गीत हमें जरूर बताएं जो इस खास मौके पर आप सुनना चाहती हैं।
2: प्रीति जी, मुझे सावन का महीना बहुत ही पसंद है, जिसमें उसके जो भजन रहते हैं, जो गीत रहते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। प्रीति जी, मीना कुमारी मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो फिल्म आई थी बहू बेगम, उसका एक गीत मुझे बहुत पसंद है।
3: पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले सावन ऋतु।
1: क्या बात है अंकिता जी और आयुषी, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से इस गीत को गाया। चलिए श्रोताओं के साथ मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, श्रद्धा हो मन में, सेवा हो कर्म में, शिव का नाम रहे हर पल जीवन में, सावन का संदेश बस इतना सा जानिए, प्रेम बांटिए, मुस्कुराइए और महादेव को अपने हृदय में बसाइए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अब अनुमति दे प्रीति जोशी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंदौर, प्रस्तुति प्रीति जोशी की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के

0: जंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत

0: या कि हुरमुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परम्परा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग प्वाइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं

0: जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka laksh tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpoor ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
2: Counting of votes are underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and

0: Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से सदियों तक जिंदा रहते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है ऐसे ही महान शायर, गीतकार और शब्दों के जादूगर शकील बदायूनी को, जिनके लिखे गीत आज भी मोहब्बत, रूहानियत और इंसानी जज्बात को सबसे खूबसूरत आवाज बनकर हमारे दिलों तक गूंजते हैं।

लफ्ज जब दिल से निकलते हैं तो असर करते हैं, सूखे पत्तों में भी खुशबू का सफ़र करते हैं। साल 1961 में आई सुपरहिट पारिवारिक फिल्म घराना का ये गीत था जो शकील बदायूनी ने लिखा था। इस बेहतरीन गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, क्या खूब कहा है शकील बदायूनी ने, महबूब की तारीफ में लिखे गए गीतों की बात हो और चौदहवीं का चांद हो का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गीत में प्रेम है, सौंदर्य है और उर्दू अदब की वो नज़ाकत जिसने इसे कालजयी बना दिया।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

श्रोताओं, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान के साथ। शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूनी में हुआ। उर्दू अदब की गहरी समझ, सहज भाषा और दिल को छू लेने वाली अभिव्यक्ति ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सम्मानित गीतकारों में शामिल कर दिया। एक शेर याद आता है, तेरे हुस्न की ताबीर लिखूं या चांद का चेहरा, दोनों में फ़र्क करना आज भी आसान नहीं। पेश है एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम की पवित्रता और समर्पण दोनों दिखाई देते हैं।

शिक्षित और शकील बदायूनी रिश्तों की नज़ाकत को बहुत खूबसूरती से समझते थे। उनके गीतों में शब्द कम और एहसास ज़्यादा सुनाई देते हैं। यही वजह है कि दशकों बाद भी उनके गीत उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने समय में थे। मोहब्बत की ज़ुबां अल्फाज से समझी नहीं जाती, ये वो खामोशी है जो दिल से दिल तक पहुँचती है।

शुदा शकील बदायनी ने हिंदी सिनेमा को सबसे बेहतरीन हिंदू भक्ति भजन दिए, जबकि वे खुद एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थे। उनके लिखे भजन जैसे मन तड़पत हरे दर्शन को बैजुआवरा से और मधुबन में राधिका नाचे रे कोहिनूर फिल्म से आज भी बेहतरीन सुने जाते हैं।

श्रोताओं, जब शकील बदायूं ने संगीतकार नौशाद से मिलने गए तो नौशाद ने उनकी प्रतिभा परखने के लिए एक धुन सुनाई और उस पर

लाई ने लिखने को कहा। शकील ने तुरंत लिखा, सुपरहिट गीत अफसाना लिख रही हूँ। और नौशाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शकील को उसी वक्त फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया। इसके बाद इस जोड़ी ने लगातार 20 साल तक बॉलीवुड पर राज किया।

दोस्तों, शब्दों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। शकील बदायूनी ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने प्रेम को शब्द दिए, भक्ति को स्वर दिया और इंसानी जज्बात को अमर गीतों में ढाल दिया।

फूलों की खुशबू बिखर जाती है मौसम दलों पर, अच्छे अल्फाज मगर सदियों तक महकते रहते हैं। फनकार

चला जाता है, फन जिंदा रहता है। हर सच्चा लफ्ज सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मोहब्बत का सफ़र आसान नहीं होता कभी, मगर जो दिल से चले जाएं वो राह बदलते नहीं हैं, बल्कि दिलों में ज़िंदा रहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे मराठी प्रोग्राम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत थोड़ी ही देर में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अरुण भादुड़ी का गायन, राग है नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं संजय मुखर्जी।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित अरुण भादुड़ी का गायन राग था नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे थे संजय मुखर्जी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। भोपाल है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। खेतों में किसान धान की रोपाई में जुटे हैं। वर्षा होने से भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार कम बारिश हुई है। सावन माह शुरू होते ही जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक जगतदेव तालाब मंदिर और बिरसिंहपुर के बाबा गैवीनाथ धाम में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। नगर परिषद कोठी में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2,54,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह यानी मंगल भवन का भूमि पूजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सतना और मैहर जिले में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय संदीपनी विद्यालय मैहर में विद्यार्थियों ने गुरु वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुरु शिष्य परम्परा को जीवंत किया। सतना और मैहर जिले की दिशा समिति की संयुक्त बैठक सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बाणसागर ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिले के ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा की गई और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात्रि गश्त बढ़ाई गई है और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। नियमित टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। खरीफ सीजन को देखते हुए सतना और मैहर जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित सभी प्रमुख खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अधिकारियों ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों को धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर पद्धति अपनाने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार इस तकनीक से पानी और श्रम दोनों की बचत होती है। समय पर बुआई होने से फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कलेक्ट्रेट भवन में संचालित इस कंट्रोल रूम में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत यहाँ दी जा सकती है। मैहर घराने की समृद्ध संगीत परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मैहर मल्हार संगीत सभा की शुरुआत की। शासकीय संगीत महाविद्यालय में आयोजित पहले कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, तबला, जुगलबंदी और कथक की प्रस्तुतियां दी। जिले में विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत स्कूलों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टर छात्राओं को बता रहे हैं कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये वाणी है।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, कुछ नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फ़ोन करें और हमसे जुड़ें और सुने अपनी पसंद के गीत और हमसे करिए ढेर सारी बातें। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: आपका जाना पहचाना अनिल भंडारे सुजामा नगर से।
0: जी,
1: अनिल भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
0: नमस्ते, बहुत अच्छे हैं, बताएं आप।
1: आज आपका प्रोग्राम सुना सारा तीन तक सके बजान लोग याद में दिया, बहुत बढ़िया गाने सुना, पुराने दादा कर दिया आपने, धन्यवाद आपको इसके लिए।
0: शुक्रिया जी। जी, आज शकील बदायूनी को याद किया था हमने 8:30 बजे। हाँ। फिल्म संगीत के प्रोग्राम में
1: बहुत अच्छा गाने दिए आपने, बहुत मजा आ गया, मन प्रसन्न हो गया।
0: धन्यवाद, धन्यवाद जी भंडारी जी।
1: आज आज हमने भी शकील बदायूनी की याद में
0: जी
1: मेरे महबूब का गाना सुना चाहेंगे।
0: जी जी जी,
1: मेरे महबूब याद में तेरे जागे जागे के हम रात भर करवटे बदलते हैं।
0: फिल्म का नाम क्या बताया आपने?
1: मेरा महबूब।
0: अच्छा जी, हम सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत और बताएं क्या चल रहा है। सावन आ गया है,
1: सावन में आनंद ले रहे, गरम गरम भजिया खा रहे।
0: चलिए, भजियों का आनंद तो बिल्कुल लीजिए आप।
1: आप भी आ जाइए पकोड़े खाने के लिए यहाँ पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे और
1: आप वादा करते आते नहीं कभी।
0: देखिए, बहुत सारे श्रोता होते हैं इस समय लाइन पर। हाँ। और हम भी कोशिश करते हैं हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए, लेकिन थोड़ी सी समय की कमी होती है हमारे पास।
1: मुझे कभी एक बार आपको वहीं आना काके मिलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, आप आकाशवाणी के परिसर में पधारिए और हमारे बहुत सारे अनाउंसर साथी सभी आपसे रूबरू हो जाएंगे इसी बहाने।
1: और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम सभी, आप हमें साथ देती हैं, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार आकाशवाणी इंदौर को सुनते रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। साथ ही हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देख करके हमें प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते। स्वागत है आपका एमएच
1: नमस्ते
0: हॉटलाइन में।
1: एमपी,
0: कौन
1: मैं
0: बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला
0: जी,
1: गुना,
0: गुना
1: मध्य
0: से।
1: प्रदेश से बहन जी, गुना से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: जी, मांगीलाल चंदेल जी, गुना से आपका स्वागत है। और बताएं, इस समय गुना में मौसम क्या बोल रहा है?
1: मौसम तो बहन जी, मौसम तो ये मान लीजिए इतना सुहावना हो रहा 4-5 रोज से कि
0: जी
1: आसमान में काले काले बादल इधर उधर आ जा रहे हैं और हल्की हल्की बिल्कुल फुहारे दे रहे हैं
0: वाह,
1: और
0: क्या बात
1: बढ़िया
0: है
1: ठंडा
0: जी।
1: ठंडा मौसम है, लेकिन जोर से नहीं गिर रहा है, कम कम ही गिर रहा है, तगड़ा
0: रिम
1: नहीं
0: झिम
1: गिर
0: की
1: रहा
0: फुहारें
1: पानी।
0: अभी चल रही हैं,
1: रिम
0: मतलब है
1: झिम, सावन के
0: ना?
1: महीने में रिम झिम की फुहार
0: जी
1: है
0: जी जी बताएं,
1: ऐसा
0: कौन
1: मौसम
0: सी पसंद है आज आपकी?
1: है। फिल्म का नाम रहेगा बूट पॉलिश
0: जी
1: और गाने के बोल हैं, चली कौन से देश गुजरिया तू सजदच के।
0: हाँ जी, बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे गीत तलत महमूद और आशा भोसले के स्वर में है।
1: जी। और
0: और
1: बहन जी कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल कर लीजिए
1: हमारे मित्र हैं
0: जी।
1: बलवंत कुमार वर्मा जी प्रेमलगंज आलोट से,
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: एक हैदर खान जी हैं सुरैना जिला रतलाम से, और भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, बाबू शर्मा जी हैं, और
0: जी
1: गजराज सिंह लोधी जी हैं, और हसीना भी मंसूरी हैं पालदा नाका इंदौर से। इन
0: जी
1: सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल। तो आप सभी श्रोता मिलकर के सुनिए।

0: रही हैं?
1: महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से है? वाह, क्या बात है।
1: हाँ
0: महाराष्ट्र से आपने हमको फोन किया और आप हमारा कार्यक्रम महाराष्ट्र में बैठकर सुन रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात
1: जी
0: है। जी बताएं, और कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया, और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया हो गई।
0: अरे वाह, हम भी बहुत बढ़िया हो गए आपसे बात करके। आप श्रोताओं से मीठी मीठी बातें करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है।
1: आप
0: और
1: जी इतने बढ़िया एंकरिंग कर रहे होंगे तो हम श्रोताओं को तो सुनने में भी मजा आता है, करो कॉल लगाने में भी मजा आता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल। और हमें आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तो। क्या करती हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: जी।
0: क्लासिकल में आपकी रुचि है।
1: हाँ
0: अभी आपने क्या क्या सीख रखा है शास्त्रीय संगीत में?
1: मैम, अभी तो रागों की जानकारी, उसमें रागों में जो बंदिश वगैरह होती है ना, वो सीख रही हूँ अभी।
0: अच्छा, बंदिशें सीख रही हैं, तो मतलब आप फिर गाती भी होंगी बहुत अच्छा।
1: हाँ मैम, गाती भी हूँ।
0: तो सुनाइए हमें कुछ, हमारे श्रोता
1: अभी
0: भी
1: मैंने जो
0: सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम, हाँ फिल्म का नाम है पति पत्नी, उसमें गाना मैंने चुना है, वो गाना सुनाती हूँ मैं। हाँ
0: जी जी बिल्कुल, पति पत्नी, कौन सा गीत?
1: अखियाँ मेरी पूछ रही है, देखो मेरे चैन
0: बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, तू ही यार
1: थैंक
0: मेरा।
1: यू जी।
0: बिल्कुल हम आपको सुनवाते हैं, और ये फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो। जी धन्यवाद।
1: मैम डेडिकेट डेडिकेट आपको रहेगा और हमारे सभी श्रोताओं को। जी
0: हाँ शुक्रिया शुक्रिया, और सभी श्रोताओं तक आपकी बात पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से। सुनिए, और आपके साथ
1: ओके
0: सभी श्रोता सुनेंगे ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं? हाँ
1: मैं हीरू जी बाग से बोल रही हूँ,
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बाग जिला धार।
0: बाग से बात कर रही हैं, जिला धार।
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: हाँ, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हमको गंगा मैया में जब तक पानी रहे सजना तेरी जिनगानी रहे, वो वाला।
0: अच्छा ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे।
1: मैम
0: और आप रेडियो कैसे
1: आपके
0: सुनाई, मोबाइल पर? रेडियो
1: नहीं, हम तो रेडियो सुनते हैं।
0: सुनती हैं? कब से सुन रही हैं रेडियो आप?
1: ये तो बहुत साल हो गया सर दीदी हमको। हाँ
0: बहुत साल हो गए रेडियो सुनते हुए। अच्छे लगता है आपको रेडियो के कार्यक्रम, अच्छे लगते हैं?
1: हम तो कार्यक्रम सब सुनते, खेती की इन सब ये उनवाने क्या आते हैं ना, वो सब उसमें सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, चलिए
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: दूसरे का
0: बात
1: ये
0: है, और हम आप तक
1: आप
0: पहुंचा
1: कैसे
0: रहे हैं
1: हो?
0: गीत। जी बताएं।
1: आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और है ना, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब अच्छे रहें, हमारे श्रोता भी अच्छे रहें, हम भी स्वस्थ बने रहें। और हम आपको सुनवाते हैं ये गीत जो आपने पसंद किया है, गंगा मैया
1: धन्यवाद
0: में जब तक पानी रहे। जी
1: धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्ते।
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूरज बात कर रहा हूँ।
0: जिला अशोकनगर एमपी से सूरज बात कर रहे हैं जी। सूरज जी, बताएं क्या पसंद
1: और
0: है।
1: आज मुझे सुनना है दामिनी फिल्म का गाना गवाह है चांद तारे गवाह है।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। और बताएं आपके बारे में।
1: हम खेती बाड़ी करते हैं,
0: अच्छा, अभी क्या उगा रखा है।
1: अभी धान लगी।
0: अच्छा, तो आपकी खेती पाती का काम कैसा चल रहा है, पानी का।

0: जो मौसम है उसके अनुसार।
1: काम तो बढ़िया चल रहा है, थोड़ी सी बारिश का इंतजार है, बारिश पर्याप्त नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
0: हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा रुक रुक के आ रही है बारिश, तो बहुत कम आ रही है ना, जितनी आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतनी नहीं हो पा रही ना।
1: जी जी
0: अच्छा, तो आप खेतों में बैठ करके रेडियो सुनते रहते हैं हरियाली के
1: खेतों
0: बीच?
1: पर भी सुनते हैं, घर पर भी सुनते हैं।
0: हाँ नहीं, खेतों में हरियाली के बीच ज़्यादा आनंद आता होगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही कह रही हैं।
0: हाँ ठीक है, सुनिए आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म दामिनी का जो आपने पसंद
1: जी
0: किया है गीत,
1: धन्यवाद।
0: नीचे सुनिए।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: नागदा जिला उज्जैन से जी बात कर रहे हैं ना, प्रेम सिंह जी?
1: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। नादिजा जी, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सबकी दुआएं हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, और आप भी स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
0: जी धन्यवाद, हमें भी अच्छा लग रहा है
1: जी। मैं बताऊँ, पहले मैं रेडियो पर कार्यक्रम सुनता था आकाशवाणी इंदौर के
0: जी,
1: लेकिन अभी 2026 में मैं मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, आप न्यू मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोबाइल पर बहुत अच्छी तरह आपको सुनाई दे रहा होगा हमारा ये कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल, स्पष्ट प्रसारण आता है, और हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना
0: जी,
1: तो हमें बहुत ही सुविधा हो गई, क्योंकि हमारे साथ में हमेशा रेडियो रहने लगा है अब।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जेब में ही रेडियो चलता है अब, है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले है ना कहीं जाते थे ना तो रेडियो घर पे छोड़ना होता था, हम कार्यक्रम मिस
0: नहीं
1: कर
0: सुन
1: जाते
0: पाते
1: थे,
0: थे जी,
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: सुन पाते
0: बिल्कुल।
1: थे, और जब खेत में काम करने जाते थे ना तो मतलब रेडियो साथ में ले जाते थे, लेकिन खेत की मेड़ तो रख देते थे, लेकिन अब तो मतलब जेब में रहता तो खेत में काम करते करते भी आसान से सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत आसानी हो गई है, सही बात है, अब हम दुनिया में कहीं भी हों रेडियो के साथ हमेशा रह सकते हैं, है ना?
1: जी और जी बिल्कुल, और जब आकाशवाणी पर आप बहुत ही अच्छी सी गाने सुनवा रहे हैं श्रोता के पसंद के,
0: जी
1: और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं।
0: धन्यवाद आपको,
1: जी
0: है ना? अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी हिना फिल्म का सुनवा दीजिएगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे गीत।

0: हिना फिल्म का जो आपने पसंद किया है। और
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: धन्यवाद जी प्रेम सिंह जी। और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत फिल्म हिना से।
1: ओके जी थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते माजदा जी। जी
0: नमस्ते, स्वागत है आपका एम एच हॉटलाइन में।
1: धन्यवाद मैम।
0: बताएं कैसे हैं और क्या सुनना चाहते हैं।
1: जी एकदम बढ़िया है। आप भी अच्छी होंगी ऐसी छोटी प्रार्थना करते हैं।
0: बिल्कुल, हम भी अच्छे हैं और हम भी सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा अपराधी।
0: अपराधी। जी
1: जी
0: हाँ जी, ठीक है। अपराधी का गाने के बोल।
1: दर्द है दिल, जीने का
0: जीने
1: मरने
0: का।
1: का मजा आने का।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। और बताएं क्या चल रहा है। बढ़िया
1: दुकान में बैठे हैं, ग्राहक
0: जी,
1: का इंतजार कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन
0: गाने
1: रहे हैं।
0: सुनने का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप अपने काम के साथ साथ गाने सुन रहे हैं, गानों का लुत्फ ले रहे हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म अपराधी का
1: जी
0: गीत।
1: मैंने अभी अपना नाम तो बोला ही नहीं, आप तो पहचान गए लेकिन लोग नहीं पहचाने। जी
0: चलिए आप अपना नाम बता दीजिए तो अच्छी बात है।
1: मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से। जी
0: अरविंद अग्रवाल जी, ठीक है, ओके। चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। और कुछ बात करना चाहते हैं, आपके दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
1: नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। मेरा एक दोस्त था,
0: जी
1: वो मुखर्जी नगर देवास में रहते हैं, बस उन्होंने
0: चलिए
1: मना कर दिया।
0: चलिए लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: जी

0: जी
1: बढ़िया मैडम।
0: हाँ जी
1: मेरा को गाना सुनना था विधा का फिल्म का
0: जी
1: सात सहेलियां खड़ी खड़ी लड़िया सुना है घड़ी घड़ी।
0: बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे सीताराम जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं खेती करता हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है, आप तो अन्नदाता हैं हमारे किसान तो अन्नदाता हैं
1: किसान और सैनिक, जय जवान जय किसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनके बगैर तो हमारा जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है
1: सिर्फ दो आदमी से चलता है, किसान और जवान।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप
1: तो मैडम मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, अक्सर फोन लगाते रहता हूँ, पर आज पहली बार फोन लगा है।
0: अच्छा ऐसा?
1: हाँ पहली बार फोन लगा है
0: जी।
1: और हम मतलब खेत में काम भी करते हैं, अब तो रेडियो पे मोबाइल में न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं, इसके पहले रेडियो रहता था
0: जी।
1: तो सेल थोड़े महंगे पड़ते थे, लाने की सकते नहीं थी सेल, तो हम ये अपने किसान टारचों में उसका कनेक्शन करके
0: जी
1: खेत में एक बांस गाड़ते थे तो और उसमें रेडियो बांध देते, तो खेत में काम करते तो हमको सुनाया करता था रेडियो
0: क्या बात है, और अब आपके साथ रहता है क्योंकि मोबाइल तो हमेशा साथ होता है।
1: और उसमें हमको एक फायदा भी था मैडम, अगर खेत में जो अपने जानवर वगैरह है वो आवाज सुन के भग भी जाते
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, सच बात है।
1: सोयाबीन लगाया है
0: जी,
1: मूंगफली लगाई।
0: अच्छा सोयाबीन और मूंगफली आपने समय लगाई हुई है, बहुत अच्छी बात है जी। और अभी आपको गीत सुनवा दें हम आपको
1: मैडम? ठीक है मैडम आप कौन बोल रहे हैं
0: जी?
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं माजिदा खान बात कर रही हूँ
1: आकाशवाणी
0: इंदौर से जी। कुमाबल जी लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत, और आज आपको अच्छा लगा होगा कि पहली बार आपका फोन लगा है और आप इतने सालों से रेडियो सुन रहे हैं।
1: 1980 सुनते रेडियो।
0: हाँ जी वही मैं कह रही हूँ कि आप इतने समय से रेडियो सुन रहे हैं और आज आपकी खुद की आवाज रेडियो पर सुन रहे हैं आप, तो अच्छा लग रहा होगा हमसे बात करके आपको।
1: ठीक है मैडम,
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद।
2: बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

0: तारीफ कैसे करें माजिदा जी आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
1: क्या शायरी होती है आपकी झोली में, बहुत सारी बहुत बहुत सारी खूबसूरत सी शायरियाँ आपकी झोली में होती है हमेशा। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया आपकी शायरी के लिए। और बताएं
0: आप?
1: मैं अच्छी हूँ
0: जी, अच्छा ही रहना चाहिए। हम लोग दुआ आपके आपके साथ, सभी अनाउंसर के साथ, सभी अच्छे सलामत रहे।
1: जी जी बिल्कुल, और हमारी दुआएं भी आप सभी के साथ रहती हैं। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है नाम और गाने के बोल हैं, तेरे दिल की तो जाने में अपने दिल की जानू में तुझ पे मरती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। ये सुना दीजिए।
1: क्या बात है, आप तो गाना भी बहुत अच्छा गुनगुना लेती हैं। चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत, मैं आपको सुनवा रही हूँ फिल्म नाम का गीत जो आपने पसंद किया है। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते।
1: हाँ मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति।
0: जी जी कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी
0: एमएच हॉटलाइन में स्वागत है आपका। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म दलाल का सुना दीजिए।
0: जी।
1: ठहरे हुए पानी ने कंकर न मार सावरे, मन में हलचल से मच जाए, ये वाला।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो गाया है गाना वही हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: मेरे दोस्तों का नाम?
0: जी जी बिल्कुल लीजिए।
1: हाँ ये राजीव अग्रवाल।
0: हाँ जी।

0: हेलो
1: माजिद जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: जी
0: और बताएं।
1: बस बढ़िया, आप सुनाइए, आपके क्या हाल है?
0: हमारे भी हाल चाल बढ़िया है। अब अपनी पसंद का गीत सुनाए जल्दी से, मुझे बहुत ही कम टाइम बचा है मेरे पास।
1: भगवान दादा फिल्म में गीत है किशोर जी की आवाज में, उससे पहले।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। हमारे पास वक्त बहुत ही कम बचा है और आखिरी गीत होगा, है ना?
1: जी जी
0: जी, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हेलो मैडम।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम, सुनील बोल रहे हैं।
1: सुनील जी, पूरा नाम बताएं।
2: राजस्थान से सुनील, सुनील कुमार।
1: सुनील,
2: गाना सुनना है
1: जी, बताएं।
2: फिल्म का नाम है रहीस, गाने के बोल है जालिमा।
1: अच्छा, क्या करते हैं सुनील जी?
2: मैडम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, अकाउंटेंट के पदस्थ पर
1: जी। सुनील जी, आपका गीत हमारे पास उपलब्ध है अरिजीत सिंह की आवाज में, आपको सुनवाते हैं।
2: मैडम आप कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम रक्षा है सर।
2: ओके मैडम, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम
1: हेलो
0: फोन करें, गीत सुने।
1: जी, मैं कोलार रोड भोपाल से बोल रहा हूँ, राम बाबू मालवीय।
0: राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ मैम, आप कैसे हो और आकाशवाणी टीम कैसी, क्या है?
0: सब बहुत अच्छा है यहाँ पर भी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या करते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: राम
1: जी
0: राम बाबू जी?
1: अपने लॉन्ड्री का काम है, ड्राई
0: अच्छा,
1: क्लीनिंग का शॉप है, तो काम वाम भी करते हैं और आपके आकाशवाणी के सभी हर जगह के प्रोग्राम सुनते रहते हैं और विशेषकर तो अपने विविध भारती, अपने भोपाल और आकाशवाणी भोपाल ज्यादा ही सुनते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं?
1: जी, आज फिल्म दिल है कि मानता नहीं,
0: जी
1: उसी में है मैनू इश्क दा लगी है रोग।
0: बिल्कुल, गीत हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको सुनवाएंगे।
1: हाँ जी,
0: जी
1: और मैम एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ
0: बताएं।
1: आपसे,
0: जी
1: एक व्हाट्सएप फरमाइश भी होना चाहिए ना प्रोग्राम में, हफ्ते में एक या दो बार।
0: व्हाट्सएप पे आप फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हाँ जी, क्योंकि ये अपने जो मध्य प्रदेश के नाम से होगा या आकाशवाणी, तो बहुत बड़ा ये मतलब अपना नेटवर्क है
0: जी
1: और अपने मध्य प्रदेश में चलते हैं तो सभी जगह के, हर जगह के जो मैसेज आएंगे और उनके नाम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सबकी पसंद के गाने सुनेंगे तो और
0: जी
1: अच्छा लगेगा।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका दिया हुआ सुझाव हम यहाँ पर हमारी टीम के साथ साझा करेंगे।
1: जी जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करी की सुने।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। किनसे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं जिला जयपुर गांव बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: पूरन वर्मा जी।
1: जी मैडम
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: हम भी अच्छे हैं। क्या चल रहा है पूरन जी?
1: बस मैडम खेतों में थोड़ा खेत वो था, बाजरा बोया था, तो बरसात का इंतजार है। बरसात कम है इधर तो आपके उधर?
0: अभी तो अच्छी हो रही है, लगातार मौसम बना हुआ है
1: जी। यहाँ तो बादल बहुत ज्यादा होते हैं और बरसात भी बहुत कम होती है मैडम। भैया कल हुई थी थोड़ी बहुत
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज जी?
1: आई मिलन की रात में एक गाना है, मत रहो मेरे दिल, ये मिल जाएगा।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, आपको सुनवाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं हसीना बी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: हसीना बी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे मैडम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: जी, मेरा नाम रक्षा है।
1: जी जी, रक्षा। रक्षा मैडम, गाना सुनना है मेरे को एक।
0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये स्वर्ग से सुंदर का गाना है, फिल्म का नाम, और गाने के बोलने अब के बरस

0: बाद हो, ये सुना दीजिए।
1: बहुत अच्छा गाया है आपने, लेकिन माफी चाहूंगी ये गीत हमारे पास उपलब्ध नहीं है
0: ये नहीं है,
1: जी। कोई और गीत सुनवा सकते हैं आपको?
0: ये आग और शोला के मिल जाएगा मैडम।
1: आग और शोला फिल्म से कौन सा गीत?
0: बरसा रे बरसा अब के यू पानी, हो एक तो ये मौसम दूजे जवानी।
1: जी बिल्कुल, ये गीत मनिहर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं।
0: थैंक यू मैडम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते बहन जी, मैं ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ।
0: जयपाल यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हूँ। सब आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का साथ बना रहे और आप लोगों का स्नेह बना रहे।
0: क्या कहते हैं जयपाल जी?
1: जी बहन जी, मैं मतलब खेती कृषक से भी जुड़ा हूँ, साथ में समाज सेवा करता हूँ, गरीब परिवार का सहायता सबके बच्चों को, बच्चियों को या परिवार की।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप।
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है।
1: लोगों से सीखते हैं, आप विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो जो भी बातें या जो भी जानकारियां आती हैं तो ग्रामीण अंचलों तक, जो ज्यादातर परिवार पढ़े लिखे नहीं है, तो उन तक उनकी योजना का लाभ दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता रही थी।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है जयपाल जी। कार्यक्रम आज फोन करे गीत सुने हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: आज इसी से मिलता जुलता एक गीत है, फिल्म का नाम है ताल, इसी का शीर्षक गीत सुना दीजिए, ताल से ताल मिला।
0: बिल्कुल, ताल फिल्म का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: अच्छा रक्षा बहन जी, आपसे बात करके।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी, हम बोल रहे हैं हरदयाल जाटव शेखपुरी जिला से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हैं, आप कैसी मैडम?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या चल रहा है, क्या करते हैं हरदयाल जी?
1: खेती किसानी करते हैं मैडम।
0: खेती किसानी करते हैं, क्या लगा रखा है अभी?
1: अभी मूंगफली लगा रखी है।
0: और पानी वगैरह कैसा है आपके यहाँ पर?
1: अभी पानी तो ये मान लो कि 15 दिन से पानी नहीं बरसा है, रिमझिम बरस रहा है, थोड़ा सा चुटकट पानी बरस रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं फिर?
1: सुना दीजिए अजनबी फिल्म का, गाने के बोल भी है, फिल्म का नाम भी है, अजनबी का इंतजार है तुमसे प्यार है।
0: जी बिल्कुल, आपका ये जो गीत है हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्कार मैम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार
1: जी, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौ, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।
0: जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर जी।
1: जी मैम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी वर्तमान में फार्मर हूँ, मैंने बीएड कर लिया है।
0: अच्छा, खेती भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। क्या लगाया हुआ है अभी? क्या खेती में क्या चल रहा है?
1: धान लगा हुआ है मैम।
0: धान लगा हुआ है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पानी वगैरह ठीक गिर रहा है आपके यहाँ?
1: पानी तो मैम बहुत कम गिर रहा है, पानी की बहुत आवश्यकता है।
0: अच्छा, अरे चलिए, उम्मीद करते हैं थोड़े दिनों में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद पर ही टेके हैं और पूरी दुनिया उम्मीद पर ही चल रही है।
0: जी जी जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज बताएं?
1: आज आप मुझे सुनवा दीजिए फिल्म में खानदान गीत के, बोले ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला तो पुराना है।
0: लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म से ये गीत आपको
1: जी।
0: सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: हमारा नाम है प्राची वर्मा, हम कटनी से बोल रहे हैं।
0: प्राची वर्मा जी कटनी से, कैसी हैं प्राची जी?
1: जी हम अच्छी हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करती हैं प्राची
1: जी? हम कुछ नहीं करती, घर पर रहती हैं।
0: घर पर रहते हैं। क्या शौक है संगीत सुनने के अलावा?
1: शौक तो बहुत सारे शौक है, जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक है।
0: अच्छा, लिखती हैं आप?
1: और क्रोशिया वगैरह का बनाने का शौक है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छे शौक हैं। प्राची जी
1: हम
0: कौन
1: तो
0: सा
1: गाना सोचते ही नहीं, क्योंकि हमको लगा ही नहीं था कि हमको कि हमारा फोन लग जाए।
0: अभी सोच लीजिए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं। देखिए फोन तो लग गया
1: सुना
0: आपका।
1: दीजिए, आप अपनी पसंद का सुना दीजिए।
0: नहीं नहीं आपकी पसंद का कार्यक्रम जो है फरमाइशी गीतों का है, तो आपको ही आप थोड़ा सा समय
1: चलिए
0: ले
1: ठीक है,
0: लीजिए,
1: अच्छा
0: कोई
1: वो
0: दिक्कत
1: सुना
0: नहीं।
1: दीजिए, कटी पतंग का सुना दीजिए ना, कोई

0: देना कोई करे।
1: कटी पतंग फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: जी हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपको प्राची जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: आप बात करके बहुत अच्छा लगा,
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू
0: थैंक यू।

कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। अपनी रेडियो साथी रक्षा तंवर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाग्य प्रतिकूल होने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल नाविक समुद्र के बीच में जहाज डूबने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर जीवित रहने का प्रयास जारी रखता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के चौथा स्थान प्राप्त करने पर सराहना की है। भारत ने इन खेलों में 39 पदक प्राप्त किए हैं जबकि पिछले संस्करण में 30 पदक हासिल किए थे। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। तीसरा राउंड भी पूरा हो चुका है। सावन का पहला सोमवार राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। सवारी पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की आप सभी की फरमाइश के साथ। लिखने वाले हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य। रायपुर से लिखने वाले हैं लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल। आप सभी ने सुनना चाहा है शिकारी फिल्म का नगमा कुमार सानू की आवाज़ में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब लेते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं गांव मुकरगंज, जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, आयुषी और ओम प्रकाश। हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह, हैप्पी, JS नायक, शोभा नायक और इनकी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है शागिर्द फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रिया, अभय, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, बड़वा से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। आप सभी ने सुनना चाहा है माया फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल सुरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और तर्ज बनाई सलिल चौधरी ने।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून, डुमराव से वसीमुल्ला अंसारी और अजमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, अजमा खातून और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी ने सुनना चाहा है हीरा पन्ना फिल्म का नखवा, कुमार सानू और आपकी जगह।

0: हीरा पन्ना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक कामिनी का एकांतारे का 19वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी का एकांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी का एकांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 19वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि की बहन बंग देश की राजमाता मैनावती उज्जैनी आई हुई हैं। वे थाह पाना चाहती हैं कि क्यों उनका भाई अचानक महल छोड़कर चला गया था।

0: अवंती राज में सिर उठाती अनेक समस्याओं पर महाराज भर्तहरि की उपस्थिति मात्र से जैसे विराम लग गया। कुमार विक्रम की उच्च श्रृंखलता भी सीमित हुई। जो सामंत और राज्याधिकारी नियंत्रणहीन हो गए थे, वो कछुए की भांति अपने आप को समेटकर आगत घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे हैं। महामात्य अभी भी आश्वस्त नहीं है। महाराज की अनुपस्थिति और कुमार विक्रम की गतिविधियों की सूचना महामात्य ने महाराज भर्तहरि की बहन मैनावती को भेज दी है, जो पालवंशी बंग नरेश मानिक चंद्र की मृत्यु के पश्चात शासन सूत्र संभाले हुए हैं और अपने पुत्र गोविंद चंद्र का पोषण और शिक्षण कर रही हैं। गोरखनाथ की शिष्या मैनावती अपनी भ्रमरी विद्या के कारण सुचर्चित है। विवाह के बाद की कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि वो 17 वर्षों तक मायके नहीं आ पाई। इनमें से 15 वर्ष उन्होंने परित्यक्ता की तरह बिताए हैं। 10 वर्ष पूर्व भर्तहरि उनसे भेंट करने बंग गए हैं।
1: दीदी, यहां रहने से तो अच्छा है कि तुम उज्जैनी चलो।
2: भाग्य की बात है भ्राता, और कोई भी किसी के भाग्य का साझा नहीं कर सकता। आज मेरे पास मायके का मान तो है, और वहां रहकर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर यहां लौटकर भी नहीं आ सकूंगी। दोनों द्वार मेरे लिए बंद हो जाएंगे।
1: तो फिर कुमार गोविंद को ही मेरे साथ भेज दो।
2: उसका यहां रहना आवश्यक है, उसके अपने भविष्य के लिए भी और राज्य के कल्याण के लिए भी।
1: राजा मानिक चंद्र ने तो मर्यादा की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। 4 रानियों के अतिरिक्त सुनते हैं कि उनकी 180 सामान्य भार्याएं भी हैं।
2: किंतु अपना गोपी चंद्र अभी तक युवराज है। गुरु ने कहा है कि उसके युवा होते ही सब ठीक हो जाएगा। पटरानियों रानियों के समूह किस राज्य के अंतःपुर में नहीं है? तुमने पिंगला को छोड़कर किसी अन्य को महादेवी का पद नहीं दिया, किंतु दासियां तो तुम्हारे रनिवास में भी हैं, और अभी तुम्हारी आयु ही कितनी है? अभी लंबा जीवन शेष है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कोई एक पत्नी व्रती नरेश दिखता है तुम्हें भैया?
1: पर राजा मानिक चंद्र, तुम्हारे होते हुए भी तो कई विवाह रचा सकते थे, तुम्हें त्यागने की आवश्यकता ही क्या थी?
2: आवश्यकता आवश्यकता भैया, हर पुरुष में जन्म से ही भ्रमरवती होती है। एक फूल से दूसरा, तीसरा, चौथा, मधुलोलुपता उसकी तृष्णा को संतुष्ट नहीं होने देती, फिर अधिकार की अहमन्यता, वह सर्वत्र अपना अधिकार मानता है। मुझे त्यागना इसी अधिकार की अभिव्यक्ति है। अधिकार की उच्चता पुरुष में संदेह का बीज वपन करती है।
1: संदेह तुम पर दीदी, तुम पर? सूर्य की भांति प्रखर, दुग्ध धवल, प्रतिहार वंश में जन्मी तुम्हारे चरित्र पर संदेह? मैं इसे सहन नहीं कर सकता।
2: कुकर मत हो भाई, शांत होकर सुनो। संदेह का कारण होता है स्वयं पर विश्वास का अभाव। मनुष्य अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए कोई ना कोई ओट खड़ी करता है। एक सीमा तक मैंने सहन किया, फिर अपने पति के हर विवाह का विरोध करने लगी। मैं

0: अकेली ही नहीं, उनकी हर पत्नी दुखी थी। अपने अपने दुख लेकर वो मेरे सामने रोती थी। कुछ तो ऐसी थी जिन्हें एक ही रात पत्नी बनने का अवसर मिला था। कुछ और सुनना चाहोगे भैया?
1: हाँ दीदी, सब कुछ सुनना चाहता हूं। राज्य को संकट में छोड़कर इतनी दूर आया हूं, वहां एक ओर से चोल और दूसरी ओर चालुक्य ताक लगाए बैठे हैं। परमार भी हमसे ईर्ष्या रखते हैं। अवंती में तो बस महामात्य पूर्ण रथ का ही भरोसा है। पत्नी की मृत्यु का शोक भुलाकर वो राज्य की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित है।
0: भाग्यशाली है अवंती, यहां बंगदेश की परिषद तो चाटुकारों से भरी है। प्रजा की भलाई के उपाय और उपकरण नहीं खोजे जाते। राजन्य वर्ग में हर कोई देह का दास है, भोग के अधिकाधिक साधन जुटाने में संलिप्त। मुझे ही क्या, किसी को भी ज्ञात नहीं था कि आदिनाथ शिव के शाप से संतप्त गुरु हड़प्पा हमारे ही राज्य महल में तिरस्कार योग्य भृत के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक रात अचानक मेरी नींद टूट गई और मैं अनमनस्क सी राजमहल की छत पर पहुंची। मैंने उन्हें ध्यान मग्न देखा और आश्चर्यचकित हो गई।

0: अलौकिक आभा मंडल बना हुआ था। मेरी उद्विग्नता जाने कब तिरोहित हो गई उस अनहद नाद की तरंगों में। मैं आत्मविस्मृत होकर डूबने उतरने लगी। आनंद के अनंद आकर्षण में खिंचती हुई मैं योगी के चरण में जा गिरी। उनकी आंखें खुली और वो बोले,
1: देवी आप इस राज की राजमहिषी हैं और मैं एक नगण्य भृत्य। मैं तो अपना शाप और पाप भोग रहा हूं, नहीं चाहता कि आप किसी संकट में पड़े।
0: प्रभु आप जो भी हो, किंतु मैंने अभी जिस आनंद का दर्शन और अनुभव किया है वो अभूतपूर्व था। मैं सदैव के लिए आपके अनुग्रह की याचक हूं।
1: देवी हट और उतावली कठिनाइयों का कारण बनती हैं। तुम्हारा पति बंग नरेश मानिक चंद्र मद और विलास के उस बियाबान में पहुंच गया है जहां केवल विनाश है। उसे वहां से निकालना और लौटाना तुम्हारा दायित्व है।
0: कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति को बताया कि यहां भ्रत कर्म कर रहे वह महान योगी हाड़िप्पा हैं, जो आदिनाथ के श्राप से यहां चाकरी कर रहे हैं। इतना सुनते ही राजा मानिकचंद आवेश में आ गए। उन्होंने अपनी लात से मुझ पर प्रहार किया। उन्होंने मेरा संबंध योगी राज से आरोपित किया और मुझे त्याग दिया।
2: बंगाल के सोमपुर राज्य के पर्वतीय प्रदेश में कृष्णपाद अथवा कानपा योगी की साधना भूमि है। वो मैनावती के गुरु भाई हैं।

0: और काव्य तथा तंत्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं। नखला और मेखला इन्हीं कान्पा योगी की शिष्याएं हैं, जो इंद्रजाल, जालंधरी, सांवरी विधाओं की प्रबल ज्ञाता हैं। मैनावती ने अपनी अवंती यात्रा में पुत्र गोविंद चंद्र को साथ नहीं लिया, अपितु नखला मेखला उनके साथ थीं। उज्जैनी में राजा भर्तहरि अपनी भगिनी की आतुर प्रतीक्षा कर रहे थे।
1: कब आएगी मेरी प्रिय भगिनी मैनावती? कब? कब मैं अपनी प्रतीक्षा तुझ नेत्रों से उनका दर्शन सुख प्राप्त करूंगा?
0: अवंती में यूं तो सब सामान्य है, किंतु महामात्य जानते हैं कि कुमार की दृष्टि वैसिका पर है। वो वैसिका की दास मुक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वैसिका को पाने के लिए उसने महारानी पिंगला के समक्ष अपनी इच्छा भी प्रकट कर दी है, किंतु महारानी तो स्वयं इस समय अपने जीवन की गुत्थी सुलझा रही है।
2: वैसिका
3: जी,
2: तो तुम्हारे अनुसार महाराज जब से लौटे हैं उन्होंने एक भी रात रानी पिंगला के शयन कक्ष में नहीं बिताई? इसका कारण ज्ञात करने का प्रयत्न किया तुमने?
3: महाराज को भोजन तो महादेवी ही परोसती हैं, पास बैठकर व्यंजन भी डुलाती हैं, किंतु मैंने देखा है कि दूसरा प्रहर लगते ही महाराज निज कक्ष में चले जाते हैं।
2: और मद्यपान?
3: महादेवी के प्रस्तुत करने पर वो अनिच्छा दर्शाते हैं।
2: अच्छा, इस अवसर पर वहाँ और कौन कौन होता है?
3: चंपा रहती है।
2: और बाल कुमार?
3: वो देवी के कक्ष में होते हैं।
2: कुमार के प्रति देव का व्यवहार कैसा है?
3: वो क्षण मात्र कुमार के गाल थपथपाकर गहरी दृष्टि फेंकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदा कदा महादेवी उन्हें नरेश की गोद में भी दे देती हैं, तो वो औपचारिक चुंबन लेकर पुनः महादेवी को वापस कर देते हैं।
2: वैसे के
3: जी,
2: तुम प्रतिदिन कुमार को देखती हो, महाराज और कुमार के रंग रूप में कितनी समानता लगती है तुम्हें?
3: देव उतनी ही जितनी पिता और पुत्र में होती है। जितनी होनी चाहिए। कुमार महाराज का ही तो अंश है। एक बात पूछूं देव?
2: तुम कुछ भी पूछ सकती हो। तुम ना होती तो स्यात मैं इस कठिन समय का सामना ही न कर पाता। वैसे कहा, तुम मेरा साहस हो, किंतु इस राजवंश के प्रति अकलुष निष्ठा मेरे देह में रुधिर बनकर दौड़ रही है। अवंती की निष्ठा का मूल्य अगर मेरे प्राण हो तो भी मैं स्वीकार करूंगा।
3: प्राण? आप प्राण देंगे तो इस वैसिका का क्या होगा देव? सोचिए, क्या फिर उसे किसी बाजार में बिक्री के लिए खड़ा नहीं कर दिया जाएगा?
2: ये बात मुंह से फिर कभी नहीं निकालना। मेरे जीवन की अब केवल दो अभिलाषाएं हैं, भृतहरि के निष्कंटक राज्य में सुखी प्रजा और अपनी वैसिका की प्रसन्नता।
3: जानती हूं देव, यह भी जानती हूं कि मनुष्य का चाहा हुआ सदा नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता। मेरी माँ मुझे क्या बनाना चाहती थी, और समय की एक आकस्मिक लहर ने आकर मुझे मनुष्य से बिक्री की वस्तु बना दिया, दासों के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया।
2: तो क्या मनुष्य सब कुछ काल के निर्णय पर छोड़ दे? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मनुष्य को बलि मान रही हो या समय को।
3: तृण की भांति लहरों के थपेड़ों से इस तट पर आ लगी हूं देव। ये जानने की बड़ी इच्छा है कि मनुष्य और काल में से घटनाओं का नियंत्रक कौन है।
2: तुम नहीं जानती वैसिका कि कुछ समय से मैं अपनी धारणाओं को लेकर शंकित होने लगा हूं।

0: बार बार मन होता है कि किसी से पूछूं, चर्चा करूं उससे जो मुझे और मेरी स्थिति को समझे, जिसके साथ मैं अपनी अक्षमता और दुर्बलता बांट सकूं। मेरे बंधु बांधव, परिचित और परिजन, यहां तक कि पुत्र और पुत्री से भी मेरा पद बड़ा है। वैसे कहा, मैं केवल महामात्य बनकर रह गया हूं, मनुष्य जैसे मैं हूं ही नहीं, महामात्य पूर्ण रथ।
1: ये क्या आर्य, इस वैसिका को भूल गए? जो कहना है मुझसे कहें, मुझ पर विश्वास करें। मैं भले आपके प्रश्नों को सुलझा नहीं पाऊं, किंतु सुनूंगी, उन्हें मान दूंगी।
0: क्षमा करना वैसिका, मैं असावधान हो गया था।
1: नहीं देव, तन मन की आरोग्यता के लिए कभी कभी आंसुओं को भी मुक्त कर देना उचित होता है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने आंसू बहाकर किसी भी स्थिति का सामना करने की सामर्थ्य अर्जित किया है। संभवतः द्वार के उस पार कोई है।
2: कौन हो तुम? यहां तक कैसे पहुंची? उत्तर दो।
3: कौन है? कक्ष में आओ।
4: क्षमा, क्षमा स्वामी, क्षमा।
3: ये अभिनय व्यर्थ है दासी, बताना ही होगा कि तू यहां तक पहुंची कैसे और क्यों आई, क्या सुना और क्या देखा। और ये भी जान ले कि असत्य बोला तो तेरे प्रत्येक संबंधी की मृत्यु निश्चित है।
4: क्षमा, क्षमा देव, क्षमा।
3: नहीं बताएगी तो आधी घड़ी में मृदु भंगों के मध्य धकेल दी जाएगी। स्त्री को ऐसा कठोर दंड मैं नहीं देता, किंतु तेरा अपराध जघन्य है, तेरा अपराध क्षम्य नहीं। बता कि तेरा ये कार्य किसके द्वारा प्रेषित संचालित है।
4: देव, मैं दासी हूँ। दासी की नियति ही होती है बार बार मृत्यु। देव, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो स्वयं मृत्यु की कामना करती हूँ। मेरी माँ भी एक दासी है, एक भाई और एक बहन है। मैं नहीं चाहती कि वह दासता का अभिशप्त जीवन जिए। देवी वयसिका की गुप्तचर्या के बदले में माँ, भाई और बहन को दासत्व से मुक्त दिलाने का वचन दिया गया है।
3: किसने? कौन है वो? कोई राजा ने या राजपुरुष?
4: मैं राजपुरुष की सेवा में हूँ देव। कोई राजपुरुष ही मुझे यहाँ तक लाए हैं।
3: कौन है वो?
4: नहीं बता सकती देव, मेरे परिवार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
3: सच बोलेगी तो स्याद बच भी जाए, चुप रहने पर तो सबकी दारुण मृत्यु निश्चित है स्त्री, और तू अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखेगी। संवारक।
5: जो आज्ञा महाराज।
3: इस स्त्री को गुप्तल्प से कूटागार ले जाकर जीवक को सौंप दो। कहना महामात्य वहीं पहुंचेंगे।
6: चलो।
4: नहीं, क्षमा देव।
6: चलो मेरे साथ। आओ।
4: देव।
6: चलो। चलो। चलो।
1: कुछ कहूं देव? स्त्री को निर्वसन कर भ्रंग्रह में खड़ा कर देना अनैतिक क्रूरता नहीं है क्या?
0: राजधर्म बहुत कठोर और निर्दय होता है वैसिका। दंड व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। दंड शास्ती प्रजा सर्वे, दंड एवा भिरक्षिता। शासन भी करता है दंड और रक्षा भी। कर्तव्य के प्रति सजगता में उसकी केंद्रीय भूमिका भी है।
1: दंड शक्तिशाली का साधन बनकर निर्बल पर प्रहार नहीं करता, स्वतंत्रता को नहीं छीनता। ये साधारण स्त्री राजद्रोह का दंड भोगेगी, क्यों? केवल इसलिए कि उसने अपने परिवार के लिए सामान्य मनुष्य की भांति जीने की कामना की है, और वो व्यक्ति सुरक्षित बने रहेंगे जिन्होंने उसे एक साधन की भांति प्रयुक्त किया।
0: मैं जानता हूं, किंतु राजधर्म।
1: फिर आपका ये राजधर्म केवल छलना है। ये मनुष्य के आंसुओं के प्रति अंधा और विलाप के प्रति बधिर बना देता है।
0: वैसिका, तुम इस राज्य में दासी बनकर आई, अनादर और उपेक्षा सहन करती रही। आज भी अनेक आंखें तुम्हें ईर्ष्या और संदेह से देखती हैं। तब भी क्या तुम अपने किसी व्यक्तिगत सुख या प्रलोभन में महारानी पिंगला को कठिन परिस्थितियों में छोड़ सकती हो? अपने धर्म पिता भास्कराचार्य से मुंह मोड़ सकती हो? मैंने तो इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, इसने मुझे राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। इस राज्य के विरुद्ध किसी भी गतिविधि, किसी भी दोषी के प्रति मैं सदैव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्तर पर दया स्वीकार की जा सकती है, किंतु राजधर्म उसकी अनुमति नहीं देता।
1: देव, मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे?
0: कहो तो।
1: मैं उस भृंग गुहा को देखना चाहती हूँ जहाँ इस दासी को भेजा जाना है।
0: ना ही देखो तो अच्छा है।
1: क्यों?
0: तुम तो ये भी नहीं जानती कि ये भृंग गुफा इस पूर्ण रथ की कल्पना है। राज्य के हित में पूर्व कल्पनाएं करना राजनीति का अंग है वैसिका। उन कल्पनाओं में हमारी दृष्टि प्रजा पर नहीं होती, प्रजा हित को राजहित के तराजू पर तोला जाता है।
1: मैं आपकी क्रूर रचना को देखना चाहती हूँ।
0: सहन नहीं कर पाओगी, तुम्हारा हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता है।
1: मैंने अपना संसार उजड़ते देखा है देव, इन आंखों ने अपनी माँ की हत्या भी देखी है।
0: तो फिर चलो।

0: ये गुप्त मार्ग राजा सहित केवल 5 व्यक्तियों की जानकारी में है। 15 भटकावों वाले इस मार्ग के भीतर पहुंचा व्यक्ति जीवित बाहर नहीं निकलता। मैं पहले प्रवेश करता हूं, तुम पीछे आकर मेरा हाथ पकड़ लेना। भीतर अंधेरे में दृष्टि नहीं, केवल ज्ञान और अनुमान ही साथ देता है। अरे तुम हंस रही हो वैसे का?
1: बहुत रो चुकी हूं महामात्य, अनेक के आगे और निपट एकांत में भी। इस अंधेरी की कृतज्ञ हूं कि यहां मैं मुक्त होकर हंस सकती हूं। जोखिम की उन घड़ियों में गुप्त और अंधेरे रास्ते पर, जहां कोई भी भूल या प्रमाद हमारा अंतिम आवरण बन सकती है, अंधेरे के ये क्षण बहुमूल्य हैं। अब आगे चलें, लाइए हाथ दीजिए।
0: मेरी और तुम्हारी वय में पूरी एक पीढ़ी का अंतर है वैसिका।
1: इस समय मैं ना आपको देख पा रही हूँ, ना आप मुझे। यहाँ ना कृष्ण केशों का अस्तित्व है और ना सिद्ध केश ही दिखते हैं। यहाँ कितना चमकीला प्रकाश है।
0: सामने भ्रमर गुहा है, राजभवन के ठीक नीचे वन उत्थान से लगी हुई।
1: तो क्या सिंह आदि हिंस्र पशु भी वहाँ हैं?
0: राज्य और राजा की सुरक्षा के लिए इन्हें पालना पड़ता है वैसिका। वो मधुभ्रंग हो या फिर सिंह अथवा सैनिक, उन शिलाओं के बीच उड़ते हुए भ्रंगों को देखो। बस एक पत्थर किसी छत्ते पर फेंकना होता है और वो आक्रमण कर देते हैं। मनुष्य के निर्वस्त्र शरीर पर सहस्त्रों सहस्त्र विषैले टंक, रोम रोम पर।
1: कल्पनातीत पीड़ा भोगता होगा वो, अनुमान से परे। तो आप उस दासी पर भी यही प्रयोग करेंगे?
0: यदि उसने सत्य नहीं बताया तो।
1: मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा भी कर सकते हैं।
0: देवी, मैं कह चुका हूं कि अवंती राज्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपने प्राण भी।
1: क्या मुझे भी त्याग देंगे?

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का 19वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार सुभाष सक्सेना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, मैनावती दिव्या पवार, हड़िप्पा सौलत सईद खां, वैसिका प्रमिला दिवाकर, दासी ममता चोपड़ा और महामात्य अरशद इकबाल।

0: परिकल्पना, पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप।
1: प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाग्य प्रतिकूल होने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल नाविक समुद्र के बीच में जहाज टूटने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर जीवित रहने का प्रयास जारी रखता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। सावन माह का पहला सोमवार राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। सवारी पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे वापस मंदिर लौटेगी। और प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़े अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि संसार का सबसे अनमोल रिश्ता एक माँ और उसके शिशु का होता है। एक नवजात शिशु जब इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला स्पर्श, सबसे पहली सुरक्षा और सबसे पहला पोषण उसे अपनी माँ से ही मिलता है और प्रकृति ने इन तीनों का अद्भुत संगम माँ के दूध में दिया है। यही कारण है कि माँ के दूध को शिशु का पहला और संपूर्ण आहार कहा जाता है। श्रोताओं, माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान है। इसमें वो सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व और अमीनो अम्ल होते हैं जो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वो नए वातावरण के साथ स्वस्थ रूप से सामंजस्य स्थापित कर पाता है। यही नहीं, माँ का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत भी माना जाता है। इसीलिए विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराया जाना चाहिए और जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार के पानी या अन्य आहार की आवश्यकता नहीं होती है। श्रोताओं, स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। ये प्रसव के बाद माँ के शरीर को जल्दी सामान्य होने में मदद करता है और माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा बनाता है। आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है श्रोताओं, लेकिन फिर भी स्तनपान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कई बार सही जानकारी के अभाव में नवजात शिशु उस अमूल्य पोषण से वंचित रह जाता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों के महत्व को समझाने और जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल माताओं को ही जागरूक करना नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज को ये संदेश देना है कि स्तनपान केवल शिशु का अधिकार ही नहीं बल्कि उसके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। श्रोताओं, एक स्वस्थ शिशु की नन्ही सी मुस्कान पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियाँ बिखेर देती है। उसकी किलकारी, उसकी मासूम हंसी और उसकी खिलखिलाहट जीवन का सबसे मधुर संगीत बन जाती है।

0: हैं। ऐसे में इनसे जुड़ी समस्याओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंखों की किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चलिए तो आंखों के सामान्य और विशेष रोग क्या हो सकते हैं और उनका उपचार कैसे संभव हो सकता है, आज इस बारे में विस्तार से हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर गजेंद्र चावला जी से। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो इस समय में आंखों के क्या रोग हो सकते हैं या क्या सावधानियां इस मौसम में बरतनी चाहिए? जैसे कि आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में जलन होती है, तो क्या ये भी किसी तरह के कोई रोग के लक्षण होते हैं?
1: जी हाँ, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई आंखों में जो बीमारियां हो सकती है उसके ऊपर भी हमें काफी ध्यान रखना चाहिए और सावधानी लेनी चाहिए। विशेषकर जब आंखों में, क्योंकि ये जो पानी होता है ये हम कितना भी बोले कितना साफ है लेकिन इसमें जर्म्स रहते हैं, तो इससे वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिससे आंखों में लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, पानी आने लगता है। तो ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस या वायरल इन्फेक्शन ऑफ आई का लक्षण होते हैं और इसके ऊपर हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही कभी कभी हमारी आंख की पलकों में इस सीजन में टाई या जिसको हम सामान्य भाषा में गोरी बोलते हैं वो भी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इन दोनों बीमारियों में हमको रेगुलर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और आपको अपने नजदीक के नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका समय पर उचित उपचार कराना चाहिए, अन्यथा ये आगे जाके थोड़ी सी आंखों को ज्यादा दिक्कत कर सकता है। कई बार मरीज जो होता है वो ओवर द काउंटर मतलब वो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाता है और बोलता है मेरी आंखें लाल हो रही है, मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई दे दे, तो वहीं से वो एक दवाई ले लेता है जो कई बार घातक हो सकती हैं, जिसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मेरा अपने श्रोताओं को सलाह रहेगी कि वो अपने आप ट्रीटमेंट न करें, अपने नजदीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में सलाह लें।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो सामान्य तरह की तकलीफें होती हैं आंखों में, मोतियाबिंद जैसे कि कैटरेक्ट कहते हैं हम, वो क्या होता है और किन कारणों से होता है?
1: देखिए, मोतियाबिंद जो है बहुत कारणों से हो सकता है, पर जो सामान्यतः या विशेषतः जो कारण रहता है वो उम्र के कारण होता है। क्या होता है कि जब हम अगर हमारे आंख की कल्पना करें तो एक कैमरे से तुलना की जा सकती है, जैसे कैमरे में आगे लेंस होता है और पीछे फिल्म होती है, वैसे ही आंख के बाहर हिस्से में एक लेंस होता है जो सभी की आंखों में रहता है और वो हमारी जो जिस चीज को हमको देखना होता है उसकी इमेज को, उसकी से निकलने वाली किरणों को हमारे रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। इसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसी भी कारण से जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं या उसकी जो ट्रांसपेरेंसी, उसकी जो पारदर्शिता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो जो लाइट अंदर जानी होती है वो लाइट जा नहीं पाती है और इस कारण से दिखना कम हो जाता है। यह एक सामान्य सी स्थिति है और जो पहले के जमाने में हम बोलते थे कि उम्र के कारण हो रहा है, 50-60-70 साल में हो रहा है, पर आजकल किसी भी उम्र में देखा जा सकता है, अर्ली एज में भी देख सकते हैं। बच्चों में कई बार ये पैदाइशी भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या कुछ बीमारियां होती है जैसे डायबिटीज वगैरह, उनमें भी इसका जल्दी होना भी एक सामान्य सी बात है। कुछ दवाइयां बाजार में प्रचलित है कि इससे हमारा मोतियाबिंद रुक जाता है, इससे डिले हो जाता है, सब भ्रांतियां है। मेरा सभी से यह सलाह है कि इस टाइप की भ्रामक चीजों से बचे और मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेशन। हाँ, आज के जमाने में ऑपरेशन बहुत सुविधाजनक हो गए हैं और पेशेंट की नीड बेस पे होगा। नीड बेस से मतलब यह है कि जब मरीज को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है और ये मोतियाबिंद की वजह से हो रही है, तो आज की जो आधुनिक पद्धति है जिसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन या शॉर्ट में बोलते हैं फेको पद्धति, उसके द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा भी आंख की एक बीमारी है, तो ये क्या होता है, क्या कारण है और इसका किस तरह से इलाज संभव है?
1: ग्लूकोमा एक आई प्रेशर की बीमारी है। जैसे हमारी बॉडी में हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं कि 120, 130 या 80, 90 जो है वो नॉर्मल होता है, वैसे आंख का भी एक प्रेशर होता है जो 10 से लेके 21 तक का जो प्रेशर उसका मेजरमेंट होता है उसको नॉर्मल माना जाता है। यदि किसी भी कारण से ये आई प्रेशर बढ़ जाए, 21 से ज्यादा हो जाए, तो ये हमारे को ग्लूकोमा की तरफ इंगित करता है। लेकिन साथ में केवल 21, 22, 23 प्रेशर होना ही ग्लूकोमा नहीं होता, उसके साथ में कुछ और आंखों की जांच होती है, जैसे आंख के नस की जांच, आंख की पेरिमेट्री की जांच या ओसीटी की जांच, इनके द्वारा हम लोग ग्लूकोमा की स्थिति को निर्धारित करते हैं और फिर उस हिसाब से उसका उपचार करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है, हर एज ग्रुप का व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करता है, चाहे वो जॉब वर्क हो या पढ़ाई का काम हो, बच्चों की मोबाइल का भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या कंप्यूटर और मोबाइल इनके उपयोग से भी किसी तरह का नुकसान होता है आंखों को?
1: जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज के जमाने में कंप्यूटर और मोबाइल सेंट्रिक गैजेट्स या एजुकेशंस हमारी जो दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट हो गया है। अब जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि उसके जो कंप्यूटर के वर्ड्स होते हैं वो

0: फ्लिकरिंग होते हैं, वो झलकते रहते हैं, उनको फोकस करने के लिए हमको लगातार देखना पड़ता है, या उसको अगर बोलें तो लगातार हम स्टीयर करके उसको देखते रहते हैं। उसके कारण से हमारी आंखों पर डेफिनेटली उसका दुष्प्रभाव आता है। पहला दुष्प्रभाव तो ये होता है कि हमारी आंखों की जो ब्लिंकिंग रेट है, पलक झपकाने की जो गति है, वो हम नहीं चाहते हुए भी हमारी वो कम हो जाती है। अब जब पलक झपका के हम आंखों को ड्राई होने से बचाते हैं, पर चूंकि हमारी पलक झपकाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वही कम हो गई है, तो हमारी आंखों में ड्राइनेस की टेंडेंसी बनती है। और दूसरा ऐसा होता है कि जब हम लगातार किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको फोकस करने वाली जो मसल्स होती हैं वो लगातार काम करती रहती हैं, तो थोड़ी देर बाद उसमें फटिगनेस आ जाता है, तो उसके कारण से हमारी आंखों में थकान आती है। अगर हम इसको नजरअंदाज कर दें तो ये हमारे को आगे जाके इससे हमारे को सिर दर्द हो जाता है। अब और चूंकि काम तो करना है, तो हम बचाव करने के लिए हमको हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए, कंप्यूटर से अपनी नजरें हटाना चाहिए। दूसरा, हम हर 40-45 सेकंड के बाद हमारी आंखों को बंद करके हमारी हथेली से हल्का सा मसाज 1-2 मिनट के लिए करें। तीसरी बात, 1.5-2 घंटे के बाद हम लोगों को 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और ये ब्रेक डिजिटल ब्रेक होना है। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर से उठे, लैपटॉप पे बैठ गए, लैपटॉप से उठे मोबाइल पे बैठ गए। हमको किसी भी तरीके से कंप्यूटर का यूज नहीं करना है 10-15 मिनट के लिए, और फिर से आप ऐसे 1.5-2 घंटे काम कर ले।
1: क्या कारण है कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को चश्मा लगा दिखाई देता है डॉक्टर साहब? क्या मोबाइल और कंप्यूटर ही एक खास कारण है?
0: कंप्यूटर और मोबाइल एक कारण जरूर है, यही एक खास कारण ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जो नंबर आते हैं वो जेनेटिकली भी काफी डिटरमिन होते हैं। अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो बच्चों को भी आने की संभावना ज्यादा रहती है, या कई बार ये अचानक से भी किसी बच्चे में आ जाता है, ये आंखों की बनावट के ऊपर निर्भर करता है।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और ये जानना चाहेंगे कि तो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल की उम्र के, उनको आंखों से कम दिखता है या किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो वो क्या होता है?
0: एक्चुअली जो बच्चे होते हैं, एक तो चश्मे का नंबर तो एक सामान्य सी बात है, बच्चों में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष स्थिति के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको हम लोग लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई का मतलब होता है कि बच्चे को एक आंख से दिख रहा है और एक आंख से नहीं दिख रहा है। अब उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग सामान्य तौर पर कोई भी बच्चे छोड़ो अपन बड़े भी कभी भी एक आंख को बंद करके चेक नहीं करते कि हमारी आंख की विजन कितनी है। केवल वही लोग जिनका प्रोफेशन, चाहे वो हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स हों या पैथोलॉजिस्ट हों या जो घड़ी सुधारने वाले लोग हों जो या लैब में काम करने वाले लोग हों, वो एक आंख बंद करके चूंकि उनका प्रोफेशन है तो वो देख लेते हैं। बाकी सामान्य तौर पर एडल्ट भी नहीं देखता, बच्चे तो छोड़ की बात है। अगर बच्चों को एक आंख में चश्मे का नंबर है या कोई बीमारी है और उस आंख से उसको कम दिख रहा है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको कम दिख रहा है, और वो एक आंख से ही अपना पूरा जो भी उसकी रूटीन एक्टिविटी है वो कर रहा है, वो खेल भी रहा है, वो पढ़ भी रहा है, और अपने को कभी ध्यान नहीं जाता। जब कभी अचानक किसी भी कारण से ये पता लगता है कि वो किसी चेकअप के लिए गया और वहां पता चला कि एक आंख से नहीं दिख रहा है, तब समझ में आता है कि इसकी तो एक आंख से नहीं दिख रहा और ये लेजी आई है या आलसी आई का, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एम्ब्लियोपिया बोलते हैं। अब ये एम्ब्लियोपिया ऐसी बीमारी है कि ये बचपन से ही होती है जिसमें अगर किसी कारण से हुई है, और इसका इलाज पहले 8-10 साल 12 साल की उम्र तक ही होता है, क्योंकि जो रेटिना का डेवलपमेंट होता है वो 8-9 साल में हो जाता है, तो उसके पहले पहले ही इसका इलाज होना होता है। मेरे पास अपने अस्पताल में कई बच्चे आते हैं जिनको हम लोग ने 12-14 साल की एज में भी पकड़ा है कि उनको एक आंख से दिख नहीं रहा है, उस समय उनका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं सभी पेरेंट्स को, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हों और अभी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या जो भी 7-8-9 साल के हैं जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, उन पेरेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों का आई चेकअप एक बार आई स्पेशलिस्ट से या चश्मे की दुकान पर भी जाए, चश्मे जो निकालते हैं चश्मे का नंबर ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं उनके यहाँ भी जाके चेक करा लें कि उनको दोनों आंखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या उनको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार हम ये इस चीज को अगर हमने पहले 7-8 साल की एज में पकड़ लिया और हमने इसके लिए उनका प्रॉपर नंबर और प्रॉपर एक्सरसाइज करा दी, तो हम उस लेजी आई की विजन को पूरी तरीके से रिकवर कर पाते हैं। पर अगर एक बार ये 12-14 साल की उम्र को क्रॉस करने का पता चला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको रिकवर करना, और 15-17 साल के बाद तो लगभग असंभव सा हो जाता है। तो जितने भी बच्चों का अभी एडमिशन स्कूल में हो रहा है या जो प्राइमरी सेक्शन में है, मेरे उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों का आई चेकअप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से जाकर जरूर कराएं।
1: क्या पौष्टिक आहार का भी आंखों की रोशनी से किसी तरह का कोई संबंध है?
0: पौष्टिक आहार तो एक सामान्य हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, हमारी जनरल बॉडी को पूरा ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे शरीर का हर अंग उससे, हमारी हर एक्टिविटी हमारी उससे प्रभावित होती है, तो उससे का मैं तो कोई दो राय नहीं है कि पौष्टिक आहार से हमारी चीज़ों को या आंखों की मसल्स को उसको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मैं एक उल्टी बात करूँगा कि जिन लोगों को माल न्यूट्रिशन है, जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिन लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उनमें स्पेशली जब हम रूरल एरिया में देखते हैं या मालनरिश एरिया में देखते हैं, जहां पर डाइट को लेके, जिसमें सामान्य खाने को लेके भी कुछ समस्याएं हैं, वहां पर हमने जरूर कॉर्निया से रिलेटेड या आंख की जो बाहर की पुतली होती है उसके मरीज काफी होते हैं। उनको विटामिन ए की कमी भी होती है, उसकी वजह से भी दिक्कतें होती है, कॉर्निया में भी अल्सर हो जाते हैं जिसको हम ज़ेरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। तो इस टाइप की काफी बीमारियां होती हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये बीमारियां बहुत ज्यादा सुनने में आती हैं, तो इन बीमारियों का भी क्या आंखों पर किसी तरह से कोई असर होता है?
0: यस, ये दोनों बीमारियां हमारी आंखों को बहुत गंभीर रूप से हमारे को प्रभावित करती है, स्पेशली डायबिटीज से। यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जो हमारी खान पान की दिनचर्या बदल रही है, जो अनुवांशिक कारण है या जो हम आजकल टेंशन की लाइफ ले रहे हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं। और जितनी डायबिटीज बढ़ेगी और जितनी पुरानी डायबिटीज होगी, इसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, और आंखें भी उसका अपवाद नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज है और 8-10 साल से ज्यादा की डायबिटीज है, उनकी आंखों में बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आपको शुगर है तो आप साल में एक बार अपने आंखों के पर्दे की जांच जरूर कराएं, चाहे आपको नजर से संबंधित कोई लक्षण हो या न हो, क्योंकि जब तक मरीज को ये पता चलता है कि मेरे को शुगर हो गई है और शुगर के कारण से आंखों में शुगर उतर गई है और उससे रोशनी खराब हो रही है, तो बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। इस बीमारी को बहुत प्रारंभिक अवस्था में पहचान के इसका इलाज करें तो बहुत आसानी से इलाज हो सकता है।
1: और हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे किस तरह से प्रभावित होती है आंखें?
0: ब्लड प्रेशर भी हमारी आंखों में दुष्प्रभाव करता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो कारण होता है वो हमारी जो आंख की जो खून की नलियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और उस टाइप के पार्टिकल्स, लिपिड पार्टिकल जाके जम जाते हैं, तो ये खून की नलियों का डायमीटर है वो कम होता जाता है, तो उसके कारण से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम्प्रोमाइज होता है। तो ये पूरे शरीर में हो सकता है, उसी की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसी की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसी की वजह से आंखों में भी अगर उनकी खून की नलियों का दौरा बंद हो जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। उसमें हमारे को आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें आंखों में खून आ सकता है, सूजन आ सकती है, या यदि खून की नली का दौरा बंद हो जाए तो हमारी आंखों की रोशनी अचानक से चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आई अटैक आया है, और उसको रिकवर करना मुश्किल काम है। अगर पेशेंट हमारे को 3-4 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट कर ले तो फिर हम उसको फिर भी बचा सकते हैं, नहीं तो लेट होने की स्थिति में रोशनी जाने का खतरा रहता है।
1: एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, आज के पॉल्यूशन के समय में एक आम व्यक्ति को अपनी आंखों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए?
0: पॉल्यूशन से बचने के लिए 2-3 चीजों की विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली बात, यदि हम बाहर जा रहे हैं और यदि हम चश्मा लगा लें, अगर हम पैदल भी जाएं या हम ड्राइव कर रहे हो, तो हमको चश्मा लगा के करना चाहिए। यदि नंबर का चश्मा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन 0 नंबर का चश्मा लगा लें। समय समय पर साफ पानी से अपनी आंख को धोते रहें, और यदि ज्यादा तकलीफ हो तो एक लुब्रिकेशन की ड्रॉप डालनी पड़ती है, पर वो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से बात करने के बाद ही यूज करें। देखिए, आंखें जो है प्रकृति की एक अनमोल देन है, और इस खूबसूरत प्रकृति को निहारने के लिए ईश्वर ने हमें दी है। यदि हम इसका समय पर ध्यान रखेंगे, हम नियमित रूप से इसकी जांच कराएंगे, तो डेफिनेटली हम इसको बचा सकते हैं। इसको लेके लापरवाही न बरतें, कभी भी ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर से जाके दवाई न लें, हमेशा ही अपन नेत्र रोग विशेषज्ञों से सलाह लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, और ये जानकारी निश्चित तौर पर श्रोताओं के लिए लाभकारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर गजेंद्र चावला से आंखों के सामान्य और विशेष रोग विशेष पर जानकारी ली। ये जानकारी निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लाभकारी रहेगी। और श्रोताओं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर, जानकारियां रखकर, हम हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रह सकते हैं, और परिवार में जब भी सभी स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं तो जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। चलिए इस पल को खुशनुमा बनाते हैं ये प्यारा सा गीत सुनकर।

श्रोताओं, टेक्नोलॉजी आज केवल हमारी सुविधाओं का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी पहले से अधिक स्मार्ट और कारगर सिद्ध कर रही है। ऐसी ही एक आधुनिक तकनीक है स्मार्ट इनहेलर, जो अस्थमा और COPD जैसे श्वसन रोगों के उपचार को और अधिक प्रभावी बना रही है। स्मार्ट इनहेलर सामान्य इनहेलर का ही उन्नत रूप है। इसमें लगा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल ऐप से जुड़ जाता है। रोगी जब भी इनहेलर का उपयोग करता है, ये उसके उपयोग का समय और रिकॉर्ड सुरक्षित कर लेता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि रोगी दवा लेना भूल जाए तो मोबाइल ऐप उसे समय पर याद दिला सकता है। साथ ही डॉक्टर भी ये जान सकते हैं कि दवा का उपयोग नियमित रूप से हो रहा है या नहीं, जिससे उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्रोताओं, स्मार्ट इनहेलर कोई नई दवा नहीं है, बल्कि इनहेलर में जोड़ी गई एक आधुनिक डिजिटल तकनीक है। इसका उपयोग हमेशा चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए और ये पारंपरिक उपचार का कोई विकल्प भी नहीं है, बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाने का एक आधुनिक माध्यम है। तो श्रोताओं, तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधा देना ही नहीं, बल्कि रोगियों को स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करना है। स्मार्ट इनहेलर इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम है। श्रोताओं, ये तो थी एक ज़रूरी जानकारी और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, अपना ध्यान रखें, परिवारजनों का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि घर के आसपास छतों पर यदि कूड़ा करकट होता है या गड्ढों में पानी भरा होता है तो वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं, जो डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस वादे के साथ आज अर्चना सक्सेना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं गणेश वंदना के साथ, तो लीजिए सुनिए ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों के स्वर में ये गणेश वंदना।

ब्रजभान सिंह नरवरिया के स्वर में अभी आपने सुना चौकड़ी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए झूला गीत, स्वर ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों का है।

ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना झूला गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अशोक कुमार सोनी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये भजन, स्वर अशोक कुमार सोनी का है।

अशोक कुमार सोनी के स्वर में अभी आपने सुना गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए भजन। स्वर अशोक कुमार सोनी का है।

0: अशोक कुमार सोनी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: किया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आतिफ असलम की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म रेस का गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा का गीत। गीत लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया उपचुनाव में सातवें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 3,295 मतों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 31,437 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 28,141 वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 राउंड में संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षकों की मौजूदगी में प्रत्येक राउंड के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान में 1,57,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान को व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है, ताकि यह सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देशभर

0: नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भोपाल समेत प्रदेश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा एवं आगरमालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन का आज सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। पारस जैन कई बार उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2005 से 2013 के बीच वे राज्य मंत्री के रूप में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों से जुड़े रहे। दिसंबर 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 2016 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों में अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 4 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 5 अगस्त से प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के बनखड़ी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निभौरा और करपा गांवों के बीच ओल नदी पर बने नए पुल का लोकार्पण किया। जबलपुर शासकीय आईटीआई में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में चयनित 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडला कान्हा टाइगर रिजर्व में रीवाइल्डिंग और वन्यजीव प्रबंधन के अध्ययन हेतु कर्नाटक का प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचा और आगरमालवा जिले में सुरक्षा गार्ड पदों के लिए चयन शिविर आज से 12 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
4: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय

0: शरीर को बीमारियों से मुक्त रखें और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय,

0: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2:30 हुए हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए जिसे हमने लिया है आपकी पसंद पर फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का। गीत में आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत आरडी बर्मन का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाद्य, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाक से। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है उत्तम सिंह का। लीजिए सुनिए।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म यारा दिलदारा का ये गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म जहर का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। बोल सईद कादरी के हैं और इसे संगीत से सजाया है रूप कुमार राठौर ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत की, डोंडी लोहारा बलौद से कमलेश जयपुरिया की, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, और जेल रोड रायसेन से लालचंद मिश्रा की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जहर का ये गीत।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लखनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दीवाने का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक ने, बोल समीर के हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकरों के बही खातों के साक्ष्य विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में 8वें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6,583 मतों से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन का आज सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे आज कल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय होगा शाम 6:45। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी लोकगीत और लोक रंग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8:00। रात 8:15 पर सुनिएगा सुर्खियों में।

पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात 10 से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युववाणी।

0: आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम विवावाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी। तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, आज है सोमवार और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ। साथ ही सोमवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है कुछ बातें कुछ गीत। तो उसमें हम आपसे करेंगे बातें और साथ में सुनाएंगे आपको बहुत प्यारे सुरीले और मन लुभावने गीत। इसी के साथ राज भी कुछ कुछ जानकारियां शेयर करेंगे आप लोगों के साथ।
0: बिल्कुल साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि सावन का जो महीना है उसने हमारे दिल दिमाग पर दस्तक दे दी है। तो हर तरफ फुहारे हैं, हरियाली है और सावन का आज पहला सोमवार भी है माधवी। तो हर जगह आध्यात्मिक भक्ति, पौराणिक कथाएं, बाबा महाकाल की सवारी और जो उनकी लोक कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उन सभी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। और जितने भी भक्त लोग हैं वो बाबा महाकाल का आज पहला सावन सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं, उसका एक पौराणिक और एक आध्यात्मिक महत्व है। और उसी के साथ सावन का महीना तो शुरू हो चुका है, तो आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सावन पे। उसी के साथ साथ ढेर सारी जानकारी भी आप सभी से साझा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम रोजाना की तरह आपके लिए दो सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आते हैं, तो आइए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
1: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन फिलहाल आप इनको ढूंढने की कोशिश कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आज के कार्यक्रम में। शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम सुन लें आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पावन अवसर की जिसका इंतजार करोड़ों शिव भक्त पूरे वर्ष भर करते हैं, सावन का पहला सोमवार।
2: सावन का महीना आते ही प्रकृति जैसे नई ऊर्जा से भर जाती है। हरियाली, रिमझिम बारिश, मंदिरों में गूंजते हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। सावन केवल एक महीना नहीं है, बल्कि आस्था, संयम और आत्मचिंतन का पर्व है।
1: साथियों, सनातन परंपरा में भगवान शिव को अत्यंत सरल और भोले देवता माना गया है। मान्यता है कि वे केवल सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, गंगा जल और जल की एक धारा भी यदि श्रद्धा से अर्पित की जाए तो भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।
2: अब सवाल ये है कि सावन का सोमवार इतना विशेष क्यों माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के सोमवारों का कठोर व्रत किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। तभी से सावन के सोमवार विशेष रूप से शिव पार्वती की आराधना के लिए समर्पित माने जाते हैं।
1: इसी के साथ साथियों, अविवाहित युवक युवतियां उत्तम जीवन साथी की कामना से व्रत रखते हैं, जबकि विवाहित लोग परिवार की सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया और यही कारण है साथियों कि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष ज्यादा महत्व माना गया है।
2: दोस्तों, आज का युवा भी भगवान शिव से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। वे हमें क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार पर त्याग, प्रकृति के प्रति प्रेम और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश देते हैं।
1: सावन का महीना हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणा तो देता ही देता है। इसी के साथ वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करना, जल का संरक्षण करना और प्रकृति को स्वच्छ रखना भी शिव की सच्ची आराधना ही है। दोस्तों, एक रूप है क्योंकि भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत, नदियों और वन्य जीवन से जुड़े हुए देवता हैं।
2: सही कह रहे हो तुम। और उन सभी दोस्तों के लिए, यदि आप सावन का व्रत रख रहे हैं तो केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। सत्य बोलें, संयम रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान अवश्य करें।
1: बिल्कुल साथियों, तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के ये अगले गीत की ओर।

0: तो दोस्तों, भारतीय साहित्य की जब भी बात होती है, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका योगदान समय की सीमाओं से बहुत आगे तक दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती की। उनका जीवन, उनकी लेखनी और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे।
1: बिल्कुल सही कहा माधवी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास में गहरी रुचि थी। उस समय हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक था, लेकिन गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की मुख्य भाषा बनाकर उसे नई प्रतिष्ठा दिलाई, और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक गिना जाता है।
0: उनकी साहित्यिक प्रतिभा को पहचानने और निखारने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनके मार्गदर्शन में गुप्त जी की रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में भी प्रकाशित होने लगी और देखते ही देखते वे जन जन की प्रिय कवि बन गई।
1: साथ ही उनकी रचनाएं केवल कविता नहीं थी बल्कि राष्ट्र प्रेम, सामाजिक चेतना और भारतीय संस्कृति का सशक्त संदेश भी यही थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है भारत भारती। भारत भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का अद्भुत कार्य किया। इस काव्य में भारत के गौरवशाली अतीत, तत्कालीन परिस्थितियों और उज्ज्वल भविष्य का अत्यंत प्रेरक चित्रण मिलता है।
0: भारत भारती पढ़ने के बाद हजारों युवाओं के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जाग गई थी। यही कारण था कि उनकी कविताएं केवल साहित्यिक और साहित्य तक सीमित नहीं थी बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरक आवाज भी थी।
1: साथियों, उनकी एक और अमर कृति है साकेत। यह रामायण की कथा पर आधारित महाकाव्य है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है साथियों कि इसमें उर्मिला के चरित्र को केंद्र में रखा गया है। जिन पात्रों पर पहले बहुत कम ज़्यादा लिखा भी गया है, तो गुप्त जी ने उन्हें सम्मान और एक नई पहचान के साथ इस पुस्तक में उतारा भी है।
0: और यही तो उनकी लेखनी की खूबसूरती है। उन्होंने समाज को ये सोचने का अवसर दिया कि हर कहानी में कुछ ऐसे पात्र भी होते हैं जिनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है, भले ही वो चर्चा में कम आने लगे।
1: साथियों, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में यशोधरा, पंचवटी, जयव्रत, द्वापर, सिद्धराज, कुणाल गीत, झंकार और कई अन्य काव्य संग्रह शामिल हैं। हर रचना में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय देखने को हम सभी को मिलता है।

0: यशोधरा भी उनकी एक अत्यंत लोकप्रिय कृति है। इसमें भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के मनोभावों को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। ये रचना हमें त्याग, धैर्य और नारी के आत्मलंबन का गहरा संदेश देती है।
1: साथियों, मेथिली शरण गुप्त ने केवल साहित्य नहीं लिखा बल्कि समाज को दिशा भी दी है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों को अपने रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। उनकी कविताएं लोगों को सोचने, समझने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक गहरी प्रेरणा देती हैं।
0: उनकी भाषा इतनी सरल और सहज थी कि आम जन भी उनकी कविताओं से जुड़ जाते थे, और यही कारण है कि उनके साहित्य ने गांव-गांव तक देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश पहुंचाया है। ऐसी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को शत शत नमन। उनकी लेखनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह प्रेरणा देती रहे।

0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सावन के उस प्यारे खूबसूरत से महीने के बारे में जिसका इंतजार हम सभी को बेसब्री से होता है। सावन सावन आते ही मौसम का मिजाज बदल सा जाता है। तपती गर्मी के बाद जब बारिश की पहली फुहार धरती को छूती है तो वातावरण में एक नई ताजगी और नया सुकून सा हम सभी को महसूस होता है।
1: पेड़ पौधे हरियाली की चादर ओढ़ लेते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं और चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देने लगता है।
0: सावन भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ एक पवित्र महीना है। इस दौरान गांवों में झूले लगाए जाते हैं, लोक गीतों की मधुर धुनें सुनाई देती हैं और कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं।
1: कजरी, मल्हार और अन्य लोक गीत इस मौसम की पहचान है। ये गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत, इन सभी चीजों को जीवित रखते हैं।
0: इसी के साथ किसानों के लिए भी सावन का विशेष महत्व है। यही तो समय जब खेतों में नई फसलों की बुआई होती है, अच्छी बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान सी ला देती है और देश की कृषि व्यवस्था को मजबूती देती है। यही कारण है कि सावन को आशा, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है।

0: जितने भी युवा दोस्त मुझे सुन रहे हैं, सावन हमें प्रकृति के और करीब आने का अवसर देता है। आज जब पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, तब ये महीना हमें पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और प्रकृति का सम्मान करने की प्रेरणा भी देता है।
1: साथियों, यदि हर युवा इस मौसम में एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाले वर्षों में इसका सकारात्मक एक पॉजिटिव प्रभाव हम सभी को पूरे समाज में देखने को मिलेगा।
0: बरसात का ये जो मौसम है, ये जितना आनंददायक होता है, उतना ही सावधानी भी आवश्यकता के अनुसार हमें रखनी चाहिए। इस मौसम में स्वच्छ भोजन और पीने के पानी का अवश्य ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और जल भराव वाली सारी जगहों से बचें। छोटी छोटी सावधानियां हमें मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रख सकती हैं।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर प्रकृति से दूर से होते जा रहे हैं दोस्तों, और सावन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कुछ पल हरियाली, खुली हवा और सपनों के अपनों के साथ बिताने वाले पल जो हम सभी के लिए होते हैं, ये वही एक मौसम है बदलाव का, जिंदगी के नए जीवन का, और हर कठिन समय के बाद नई उम्मीदें, एक नया प्रकाश का, ठीक वैसे जैसे गर्मी के बाद सावन सा आ जाता है। तो ये प्यारा सा मौसम आप सभी को मुबारक हो, क्योंकि सावन के साथ साथ बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन शहर में निकल रही है इस वक्त, और पूरा शहर जो है बिल्कुल भक्तिमय हो चुका है उज्जैन, और उज्जैन ही नहीं पूरा देश में इस वक्त सावन की लहर है, मुस्कान है, उमंग है, और उज्जैन में आज जो बाबा महाकालेश्वर स्वरूप हैं वो मन महेश के स्वरूप में श्रृंगार में हम सभी को दर्शन भी दे रहे हैं। तो उज्जैन और उज्जैन से जुड़ी यादें, सावन, ये सभी हम सभी को आनंदित कर देता है। तो आइए सुन लेते
0: इस
1: हैं।
0: सावन में हाँ। हम प्रकृति से जुड़े रहने का भी संकल्प लें।
1: बिल्कुल ठीक,
0: ये भी मुझे लगता है राज बहुत जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें और आगे बढ़ाने का संकल्प लें।
1: सबसे अहम, वृक्ष जरूर लगाएं।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

0: दोस्तों, आइए इस सप्ताह की प्रमुख जो रोजगार की खबरें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं।
1: तो
0: अखिल
1: आज
0: भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS ने नर्सिंग ऑफिसर के 2218 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 है। नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर है।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और जानेंगे 1 से 7 अगस्त के बीच इस सप्ताह में प्रमुख रोजगार समाचार क्या होने वाले हैं। तो जो नर्सिंग की परीक्षा है वो तो राज ने हमें बताया, लेकिन आवश्यकता ये है कि हम सही दिशा और निरंतर मेहनत और समय पर आवेदन करें, क्योंकि सही समय निकल जाने के बाद आवेदन का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
0: बिल्कुल साथियों, इसी के साथ दूसरी खबर पे भी एक ध्यान दे लेते हैं। IBPS क्लर्क भर्ती 2026 बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की तिथि अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026।
1: तीसरी खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक में भी भर्ती है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने 540 के लगभग लोकल बैंक ऑफिसरों के पद पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
0: अगली खबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 395 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है।
1: इसी के साथ भारतीय सेना यानी कि NCC स्पेशल एंट्री, देश सेवा का सपना देखने वाले सारे युवाओं के लिए भी भर्तियां है, क्योंकि भारतीय सेना ने 125वें NCC स्पेशल एंट्री कोर्स के तहत पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 अगस्त।
0: इसी के साथ साथियों, SAIL राउल केला ऑपरेटेंट भर्ती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउल केला में 1110 ऑपरेंटर्स पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 है।
1: तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस सब से बहुत सारी जानकारियां मिली होगी और उन सभी दोस्तों को

0: जिनकी इन सारी श्रेणियों में इच्छा है आगे बढ़ने की, वो ज़रूर हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन पर आगे काम करेंगे। अब समय हो चला है हमारे प्रश्नों के उत्तर का, तो राज पहला प्रश्न बताइए दोस्तों को।
1: साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है सहारा।
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है, तो इसका उत्तर है हिमालय। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
1: और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राज,
0: आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म आया सावन झूमती से, आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना है आनंद पक्षी की।

आइए अब सुनते हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का ये गीत। संगीत दिया है राजकमल ने और शब्द रचना है गौहर कानपुरी की।

श्रोताओं, यह गीत था फिल्म चुपके चुपके से, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत पथक किया था एसडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद पक्षी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
3: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
3: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
3: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
3: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
3: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना

0: जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।

0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की

0: आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

तरह की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है, परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कपिल पुरोहित और साथियों के गाए भक्ति गीत। आइए सुने ये पहली पारंपरिक रचना कपिल पुरोहित और साथियों के स्वर में।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे कपिल पुरोहित और साथियों के गाए भक्ति गीत। सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार दर्शन हम आकाश

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रतलाम जिले से, जहां डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जीवन धारा शिविर आयोजित किया गया। पेश है रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जीवन धारा उम्मीद और नई शुरुआत लाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में रतलाम सहित लगभग 9 जिलों के 97 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और 250 से अधिक परिजन पहुंचे। शिविर में बच्चों को एक ही स्थान पर समग्र सेवाएं उपलब्ध करवाई गयी। नोएडा और गुरुग्राम से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। आवश्यक रक्त जांचों के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं। फिजियोथेरेपी, पोषण संबंधित परामर्श, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और भविष्य में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जानकारी भी दी गई। जिन बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, उनके लिए मौके पर ही यह प्रक्रिया भी पूरी की गई। शिविर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थैलेसीमिया के स्थायी इलाज यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में उठाया गया कदम। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव और उनकी टीम ने 53 बच्चों और परिवार सहित कुल 102 HLA सैंपल एकत्रित किए। ये भविष्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ जीवन जी रही नन्ही बच्ची मनस्वी राव ने भी बच्चों और अपने परिवारों के साथ में सारा अनुभव साझा किया। इलाज के साथ ही बच्चों के लिए ड्रॉइंग प्रतियोगिता, मूवी शो और मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अनीता मूथा ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों और परिवारों को ये भरोसा दिलवाना है कि इस संघर्ष में वे अकेले नहीं हैं। भारत की सरकार और पूरा ही चिकित्सा विभाग और मंत्रालय इस दिशा में लगातार स्थायी इलाज की पहल कर रहा है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: हमारी दूसरी खबर है शाजापुर से, जहां जिले के सभी थानों में साइबर पुलिस हेल्प यूनिट स्थापित की गई है। शाजापुर पुलिस ने नागरिकों को त्वरित और स्थानीय स्तर पर साइबर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर संवाददाता अजीत पाराशर।
2: देश भर में साइबर अपराधों की चुनौती को देखते हुए शाजापुर पुलिस ने नागरिकों को त्वरित और स्थानीय स्तर पर साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में जिले के सभी थानों में साइबर पुलिस हेल्प यूनिट स्थापित की गई है। इसके लिए साइबर प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षकों की प्रत्येक थाने में तैनाती की गई है, जो ऑनलाइन ठगी और अन्य साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के प्रारंभिक निराकरण के साथ लोगों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता भी प्रदान करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के प्रारंभिक निराकरण के साथ साथ CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया भी संबंधित थाने में ही पूरी की जा सकेगी। इससे नागरिकों को साइबर सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला ने कहा कि
3: अभी तक हमारा जिला मुख्यालय पर ही साइबर सेल होता था, SP ऑफिस में एक, जिसमें जब भी साइबर ठगी का मामला किसी के साथ प्रकरण होता था तो वो जिला मुख्यालय तक आते थे। लेकिन अब जो साइबर अपराध की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए कि लगभग हर किसी के साथ साइबर अपराध का प्रयास किया जा रहा है और बहुत लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं, इस चीज को देखते हुए प्रत्येक थाना पर हमारे द्वारा एक साइबर सेल की शुरुआत की गई है, जिसमें एक प्रशिक्षित आरक्षक को शाजापुर जिले के सभी थानों में पोस्ट किया गया है। जब भी कोई भी विक्टिम जिसके साथ साइबर अपराध हुआ है, वह जल्द से जल्द थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें आप जितना जल्दी रिपोर्ट करें आपका जो फ्रॉड अमाउंट

0: डेटे वो ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जब भी आपके साथ साइबर अपराध जैसी घटना हो तो 1930 पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और नजदीकी थाने में भी सूचना दें।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट।
2: हमारी अगली खबर है सतना जिले से, जहां पुलिस द्वारा जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर समस्त थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली, कुलगावां, सिविल लाइन, महिला थाना, यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा नशा मुक्ति केंद्रों में जन जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों तथा नशा मुक्त जीवन के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील भी की गई। उपस्थित जनों को स्वयं नशे से दूर रहने, अपने परिवार तथा समाज को भी प्रति जागरूक करने तथा नशे के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस को जानकारी देने की बात कही गई। उपस्थित जन समुदाय को यह भी बताया गया कि जन सहभागिता से ही नशा मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विश्व स्तरीय वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ी विस्तार योजना स्वीकृत की है। विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव।
4: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समीक्षा बैठक कर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट वन्य जीव संरक्षण एवं इको टूरिज्म केंद्र बनाए जाने हेतु निर्देशित किया है। बैठक में वर्ष 2026-27 से 2045-46 तक की अवधि के लिए तैयार मास्टर प्लान में वर्तमान 121.99 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 119.87 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 241.86 हेक्टेयर में सफारी के विस्तार का प्रस्ताव है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों के संरक्षण और देखभाल के लिए अधिक प्राकृतिक और खुले बाड़े बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को तनाव मुक्त और प्राकृतिक माहौल मिले। सफेद बाघों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वंश संवर्धन के लिए विशेष संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा घायल, बीमार या अनाथ वन्य जीवों के तत्काल उपचार और पुनर्वास के लिए आधुनिक रेस्क्यू सेंटर तैयार किया जा रहा है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू में सफेद बाघों के अलावा बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, नीलगाय, ब्लैक बग, चौसिंगा, विभिन्न प्रकार के देसी व प्रवासी पक्षी एवं घड़ियाल, मगरमच्छ मौजूद हैं। साथ ही रंग बिरंगी बटरफ्लाई पार्क लोगों के खास आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से ये टाइगर सफारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से विंध्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
2: हमारी अगली खबर है सीहोर जिले से, जहां किसानों ने खरीफ फसल की बुवाई पूरी कर ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
5: प्रदेश के टॉप 5 सोयाबीन उत्पादक जिलों में शामिल सीहोर जिले में खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का लक्ष्य किसानों ने 100% पूर्ण कर लिया है। मध्य प्रदेश में काला सोना यानी सोयाबीन के प्रचुर उत्पादन के लिए विख्यात सीहोर जिले में इस बार अल नीनो के प्रभाव के चलते हुई कम बारिश ने खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन को खासा प्रभावित किया है। इस बार खरीफ के सीजन में सीहोर जिला किसान एवं कृषि कल्याण तथा विकास विभाग ने 4,08,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसमें लगभग 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बोगनी की गई है। सोयाबीन के कम होते उत्पादन के चलते किसानों ने खरीफ के सीजन में मक्का और धान की बुवाई का रकबा भी सीजन में बढ़ाया है। ऐसे में प्रत्येक पखवाड़े से हो रही हल्की बारिश के चलते जिले के किसानों ने अपनी बुवाई का लक्ष्य 100% पूर्ण कर लिया है। किसानों का मानना है कि अंतिम दौर में हुई बारिश के कारण फसल खराब होने से जरूर बच गई है। जिले का सामान्य औसत बारिश 44 इंच का है। इस बार बारिश के सीजन में अब तक 26 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस बारे में जिला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक अशोक उपाध्याय ने बताया कि
6: इस बार खरीफ के सीजन में जिले में लगभग बुवाई पूर्ण हो चुकी है। जिले में इस वर्ष खरीफ के मौसम में कुल 4,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का

0: निर्धारित किया गया था, इसमें 3,32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल सोयाबीन की बुवाई की गई है। इसके अलावा धान 40,000 हेक्टेयर, मक्का 32,000 हेक्टेयर एवं अन्य फसलें बोई गई हैं। इस बार अलनीनो के प्रभाव से बारिश कम होने से फसलों की बुवाई पर भी इसका असर देखने को मिला है।
1: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ अब स्थानीय युवाओं के लिए होटल, रेस्तरां, कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का अच्छा अवसर दिया जा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
3: शहडोल जिले के फ्रूट क्रॉप इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र आज 3 अगस्त से शुरू हो गया। पहले चरण में 60 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को होटल, रेस्तरा, इवेंट मैनेजमेंट, रेलवे और एयरलाइन कैटरिंग सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन व कैटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान नोएडा से संबद्ध है। ऐसे में शहडोल व आसपास के जिलों के आदिवासी व अन्य युवाओं को हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए अपेक्षाकृत कम लागत में व्यवसायिक प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिल रहा है। संस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 1.5 वर्ष का डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 30 सीटें हैं और कुल प्रशिक्षण शुल्क 29,250 रूपए है। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए 6 महीने का क्रॉटमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस संचालित होगा। इसमें भी 30 सीटें हैं और शुल्क 15,000 रूपए रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
2: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहां जिले की 14 ग्राम पंचायतों में बच्चों और युवाओं को तकनीकी दक्षता सिखाने के उद्देश्य से स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल खस।
4: ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों एवं युवाओं को डिजिटल शिक्षा, तकनीकी दक्षता और आधुनिक सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर 5 लैपटॉप उपलब्ध कराकर बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं आधुनिक तरीके से जोड़ने का कार्य किया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर एक कम्युनिटी फैसिलिटेटर जो ग्राम पंचायत में ऑनलाइन से संबंधित समस्त कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। स्मार्टपुर केंद्रों का संचालन जिले के जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर में किया जाएगा। इनमें चयनित पंचायतों में यह सुविधा लागू की जाएगी। नरसिंहगढ़ विकास खंड के अंतर्गत बिहार जामुनिया जोर एवं पाडलिया बना, राजगढ़ विकास खंड के अंतर्गत महाबल, हिरणखेड़ा, फूलखेड़ी, फूंदिया, खिलचीपुर विकास खंड के अंतर्गत पखेड़ी, बावड़ी खेड़ा एवं दलूपुरा, जीरापुर विकास खंड के अंतर्गत कवालसी खेड़ा, राजपुरा, लखोनी आदि पंचायतें शामिल हैं। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचार दर्शन का प्रसारण किया जा रहा था।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 30% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी देते हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर बाद शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे होगी संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 8:15 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में हमारे भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर और 9:15 पर कार्यक्रम चित्रगीत में। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 10 बजे। और शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 पर आप सुनेंगे गौरी पठारे का गायन। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे कल के कार्यक्रमों की। कल सवेरे 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। चिंतन का समय है 6:30। 6:35 पर खेती की बातें के अंतर्गत आप सुनेंगे कृषि में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, इस विषय पर अनुराधा शर्मा से जानकारी। श्री रामचरित मानस गान होगा सवेरे 6:40 पर। सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे सुनहरे पल। 8:30 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे विपर्यय की विपरीत यात्रा, प्रस्तुति देवेंद्र कौर मधु और संजीव मालवीय की। साथ ही आप सुनेंगे नरेंद्र कोहली द्वारा प्रस्तुत एक कहानी। लोक संगीत आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे और शाम 6:45 पर। कलाकार होंगे संजय महाजन और साथी। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे सवेरे 9:15 पर और शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे अंकित पारोलकर और साथी। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का गाया राग पिलास खानी तोड़ी। जिले की चिट्ठी होगी सवेरे 10 बजे। फ़ोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सवेरे 10:05 पर। फ़ोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपकी गीत हमारे होगा 11 बजे हमारे भोपाल केंद्र से। और महिला कार्यक्रम होगा दोपहर 1 बजे हमारे भोपाल केंद्र से। शाम की सभा में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:45 पर, 8:30 पर और 9:15 पर चित्रगीत में। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग होगा शाम 6 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी होगा रात 7:30 पर हमारे भोपाल केंद्र से। रात 8 बजे होगी संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात 8:15 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में हमारे भोपाल केंद्र से। रात 9:30 पर होगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा हमारे भोपाल केंद्र से। मनभावन कार्यक्रम का समय है रात 10 बजे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में कल हम आपको सुनवाएंगे जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग मलय मारुतम। ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण वर्ष में समृद्ध प्रतिबद्ध है और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रगतिशील है। इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
9: मुझे इस बात की प्रसन्नता है हरेक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार MSP पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया। गेहूं खरीदी के लिए भी 2585 का दाम था, उसपे 40 रूपए बोनस देके 2625 रूपया गेहूं अपनी सरकार ने खरीदा। धान का MSP भी लगातार बढ़ाते जा रहे।
8: मुख्यमंत्री ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और संचयन को सुनिश्चित करने के लिए कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नहरों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के व्यापक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा भी संचालित की जा रही है। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा ने आज सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि आज कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में MSME का बिल पास किया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया जिसमें विपक्षी दलों का कोई भी सदस्य चर्चा में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ, विपक्ष ने इसमें भी भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब उन्हें मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन

0: के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देशभर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का शुरू हुआ सिलसिला जारी है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भ्रातृत्व सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा और आगरमालवा सहित प्रदेशभर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं देवास जिले के महाकालेश्वर, जटाशंकर और कर्णेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिवस कल 4 अगस्त को खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और स्वरांजलि का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रूपये, रजत पदक जीतने वालों को 20 लाख रूपये और कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को 10 लाख रूपये के नगद पुरस्कार प्रदान किये। खेल मंत्री डॉ मांडविया ने खिलाड़ियों से खेल के राजदूत बनने का आह्वान किया और उनसे स्कूलों तथा कॉलेजों का दौरा करने का भी आग्रह किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स योजना का दायरा और असर बढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा चलाया जा रहा है। झाबुआ के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 5 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना में शामिल मादा बाघिन T27 का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे वन विहार भोपाल भेज दिया है। गुना के ग्राम उमरी में 200 दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में 12 अगस्त तक प्रवेश दिया जा रहा है। खंडवा के शासकीय आईटीआई परिसर में 6 अगस्त को रोजगार, स्वरोजगार व अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: का
2: अभिनंदन है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली भेण होन न साथे सगला भाई होन के भारती की राम राम। भाई बहन होन बात करा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक अत्यंत कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजना है। इको उपदेश ही यो है कि जो बहन होन गर्भवती है या जिनका बच्चा छोटा है, जो अपनी माँ को दूध पीवे है, उनका स्वास्थ्य में सुधार करनो ने उनके पोषण सारू सहायता देनो है, क्योंकि आज भी नरी बहन होन कुपोषण को शिकार है। जद भी पेट से रेवे उन्हीं वक्त भी नरी गरीब बहन होन के अपनी जिंदगी जीने सारू मजदूरी करने पड़े है। बहुत सी बहन होन के खाने सारू ढंग से कोई खानो नहीं मिले है, और बच्चा पेट में रहवे है तो उनके भी पोषण की जरूरत रहवे है। तो जद ये बहन होन जो गरीब रहवे है, मजदूरी करे है, और अपनी जिंदगी जीने सारू जब तक मजदूरी नहीं करेगी तो फिर खाने सारू कई मतलब उपयोग में ले पाएगी। एका सारू इनके जरूरी होवे है कि अगर इनको बच्चों स्वस्थ रहे तो इनके अपना के ध्यान रखनो पड़ेगा कि कैसे ये वो स्वस्थ रहेगी और कैसे कुपोषण से दूर रहेगी, जिका से उनका होने वाला जो बच्चा है वे उनको स्वास्थ्य पे उनको बुरा असर नहीं पड़े। एका सारू इन योजना को लाभ लेने वाली जो बहन होने उनके कई कार्यो जाए कि उनके वित्तीय सहायता का रूप माए पहला बच्चा सारू उनके जो पहला बच्चों हुए तो गर्भवती बहन के 5,000 की राशि 2 किस्त में दी जावे, मतलब आधी मतलब 2,500 रुपया एक किस्त का रूप में और 2,500 फिर बाद में दूसरी किस्त का रूप में इनके दी जावे, ताकि ये अपना बच्चा अपना जो गर्भवती बहन है उनके सहायता देने उनके पोषण मिली सके, वे अच्छे से रह सके। दूसरा बच्चा माए अगर कदी नानी होवे तो बहन हो उनके प्रोत्साहन का रूप माए 6,000 रुपया एक बार में ही दे दी जावे राशि, जिका से समाज में नानी होन का जन्म के बढ़ावो मिली सके। उनके 6,000 रुपये देने को यही रहे है कि उपदेश यो है कि समाज में नानी होन का जन्म के बढ़ावो मिली सके। तो या जो दूसरा बच्चा में अगर कभी नानी होवे तो 6,000 रुपया अपनी गर्भवती बहन के मिले है। बहन होन एको लाभ पाने सारू तुम्हारे कई करना है कि आकाशवाणी आंगनवाड़ी केंद्र या पास का जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाइने अपना, जैसे आप के गर्भवती हो वो तो जल्दी से जल्दी जाइके वहाँ पे पंजीयन करनो पड़े। और बाकी की जानकारी अगर तुम्हारे चाहिए तो तुम आंगनवाड़ी केंद्र की जो भी अपनी बहन होने हुए उनसे ली सको हो, स्वास्थ्य केंद्र की जो बहन होने हुए उनसे लीने इन्हीं जो योजना है इनको लाभ अपनी बहन होन ले सके हैं। देखो बहन होन आज सावन को पहलो सोमवार है, श्रावण मास यानी सावन प्रकृति को सौंदर्य उमंग न साथे ज भगवान शिव की भक्ति को सबसे पवित्र महीनों यो जो सावन को महीनो है यो मान्यो जावे है। सावन प्राकृतिक सौंदर्य, सावन आते ज धरती पे चारी तरफ हरियाली छाई जावे है, सूखा पेड़ हरा भरा हुई जावे है, न नदी तालाब में पानी भरी जावे है, ठंडी ठंडी हवा ने रिमझिम फुहार आसमान पे काला घना बादल होन को डेरो ने ठंडी हवा का साथे रिमझिम फुहार मन के घने महावे है। भगवान शिव की पूजा वैसे तो पूरा सावन महीना करी जावे है, पर सोम

0: भेनों अभी अपन ने हरे हरेश्वर पोद्दार ने साथी भेनों को गायो यो लोकगीत सुनियो। भेनों बात करा जैसे कि अपना बहुत सा मनखोन तांबा का उसमें पानी पिए, बहुत सा बर्तन तांबा का उपयोग करे घना, तो हर चीज़ की तरह पीतल का बर्तन को उपयोग भी अपन करी ने स्वस्थ रह सका। हाँ, इखे अपन कसे उपयोग में लेवा, एका सारू तमारे कई करनो है, रात भर पीतल का गिलास माए पानी भरी ने राखनो है ने सवेरे नीना पेट इखे पी लेनो है। पहला एक गिलास पानी पीने से इकी शुरुआत करनो है, पन धीरे धीरे इखे बढ़ा तो जानो है। एका गिलास खे रोज मांजी धोई ने राखनो है, तब अब तुम्हारे बताऊँ कि पानी खे पीने से कई कई लाभ हुए हैं। पीतल का गिलास खे रखियो पानी पीने से पाचन क्रिया घनी अच्छी रेवे है ने इना पानी से पेट में होने वाली बीमारी जैसे गैस, अपचन, जलन इमें घनी राहत मिले है। एका माय राखियो पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने में भी मदद मिले है। पारंपरिक रूप से यो मान्यो जावे है कि पीतल का बर्तन माय पानी पीने से जोड़ होन की अकड़न ने दर्द माय घनो आराम मिले है। घना मनक तो यो भी माने कि कदी रोज दन पीतल का बर्तन माय पानी पीवा तो चमड़ी माय चमक आने लागे है। खून की कमी के दूर करना माय भी यो पानी घनो काम आवे है, क्योंकि इमें तांबो ने जिंक शरीर माय खून की प्रक्रिया के सपोर्ट करे हैं। बेणहोन पीतल का बर्तन माय पानी पीनो एक पुरानी ने आजमाई हुई परंपरा है, जिका पीछे नरी पारंपरिक ने वैज्ञानिक आधार भी है। एका सारू अच्छो स्वास्थ्य रेवे, एका सारू पीतल का बर्तन को उपयोग करा ने पानी को पीने से स्वस्थ रेवा। या तो ही गई स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य रहने सारू अपना हर अंग की सुरक्षा जरूरी होवे है। उमे है दांत इकी सुरक्षा भी घनी जरूरी होवे ताकि ये भी स्वस्थ ने सुंदर रहे। तो जाना इनके स्वस्थ रखने सारू अपन कई करी सका। हाँ, आधुनिक जीवन शैली में दंत चिकित्सा को महत्व इका बारा में जानकारी दे रिया है डॉक्टर विनोद अंधारे, और इनका से बातचीत करी रही है बेन प्रियंका। तो सुना या भेंट वार्ता।
1: किसान भाई बिरना, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, जो न कि सिर्फ हमारी सेहत को ख्याल रखा बल्कि हमारी मुस्कान का भी खूबसूरत बनाए। तो आज को हमारा विषय है आधुनिक जीवन शैली में दंत चिकित्सा को महत्व, और हमारा साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विनोद अंधारे, जो कि एक दंत चिकित्सक है। तो सबसे पहला अपन उनको कार्यक्रम में स्वागत करा। राम राम डॉक्टर साहब।
2: राम राम, धन्यवाद मुझे आपने इसमें बुलाया और मुझे इस बात के लिए एक वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं यहाँ पर समझा सकूं मैं मरीजों को।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल कि भाई अक्सर जो अपना भाई बहना है भी दांत का जो डॉक्टर है उनका कन जाना से डर अभी से, और जो दांत निकालने की मशीन है उसकी आवाज वो सुने न उनका पसीना छूटा, बच्चा हो बड़ा हो या कोई भी हो। तो सबसे पहला तो उनको अपना एक तो डर भी दूर करना है, और साथ साथ अब पहला तो अपन विषय को अर्थ समझी ला कि भाई आधुनिक जीवन शैली में दंत चिकित्सा को कई महत्व है।
2: जैसा कि बताया गया कि आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली मतलब पहले के जमाने में और आज के जमाने में खान पान का कितना अंतर होता था। अपन सबसे पहले घर के सबसे छोटे बच्चे से देख लो, पहले घर के छोटे बच्चे को वो माँ का दूध ही पीता था और बड़ा होता था। आज के दिनों में आधुनिक माताएं अपने जो है बॉटल से दूध पिलाती है बच्चों को, और वो बच्चे सोते वक्त नींद में भी बॉटल ही उनको पकड़ा देते हैं, और वो जो दूध होता है दूध काफी मीठा होता है और उससे कीटाणु और बैक्टीरियों का जन्म होता है। तो ये जीवन शैली में बहुत अंतर आया, और इस कारण से बीमारियां जो है बच्चे बड़े हुए नहीं उसके पहले ही दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है। तो यह तो हम एकदम बचपन का बोले, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं फिर हम देखते हैं कि घर में हम पहले के जमाने में चने परमल ये सब खाते थे और कच्चे पदार्थ बहुत खाते थे। हमारे अपने बचपन में हम लोगों ने भी, आपने भी खाए होंगे चने, खाए होंगे मूंगफली के दाने खाए होंगे, तो ये जो कड़क चीजें होती हैं वो खाते थे। पर आज के आप देखो घर में कोई मेहमान आता है आपके बच्चे के लिए टॉफी ले आता है, चॉकलेट ले आता है, ब्रेड ले आता है, जो केक ले आते हैं, जो चीजें सख्त नहीं होती है मुलायम होती है। साथ साथ ये खुद आपकी जीवन शैली को बदल दिया, इससे वापस जो दांतों की बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। थोड़े और बड़े उम्र में चले हम तो आजकल जब घर के बाहर निकलते हैं बच्चे

0: तो वो लोग फिर दूसरे व्यसनों में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि उसका दुष्प्रभाव फिर सिगरेट पे पड़ता है। सिगरेट पर भी आप एक देखें, आजकल विज्ञापन काफी जोर से चलता है जिसमें कि धुआं रहित सिगरेट एक नया अट्रैक्शन दे दिया, कि एक नया आकर्षण दे दिया युवाओं के लिए कि नहीं नहीं वो तो सिगरेट है, इसमें धुआं नहीं निकलता, इससे आपके शरीर को कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये बहुत गलत है, शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन करके पदार्थ होता है। तो ये आधुनिक जीवन शैली में परिवर्तन जो आ रहे हैं, दंत चिकित्सा को इसी तरीके से समझा के हम भाई बहनों को इस बात के लिए तत्पर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब या तो जैसे बच्चा ना की बात हुई, युवा की भी, लेकिन एक हर एक व्यक्ति घर में, परिवार में सभी सदस्य, बड़ा बुजुर्ग सब है, तो किना तरीका से भी अपनी दांत ना को ख्याल रखा और किना तरह का पदार्थ ना जो है उनका सेवन करना चाहिए और किन से उनका दूरी बनाई रखनी चाहिए।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। अपन शुरुआत से ही चलते हैं, छोटे बच्चों को कुछ भी खाना पीने को देते हैं कुल्ला अवश्य कराना चाहिए, और जो प्रति 2 साल से लेके 5 से 7 साल तक के उम्र के बच्चों को माता पिता ने खुद में अपने हाथ से एक बार ब्रश करना चाहिए, और यदि बच्चे को एक बार करने दो बाकी दूसरी बार माता पिता ने करना चाहिए, क्योंकि वो देखभाल नहीं कर सकते अपने मुंह की। इसी तरीके से जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो जो भोज्य का जो खाना पाना खान पान है, तो जो सॉफ्ट चीजें हैं उनको उससे अवॉइड करना चाहिए। आजकल कोल्ड ड्रिंक होता है जिसमें कि कार्बोनेटेड पानी होता है, जिसमें कि शक्कर वाला पानी रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया का उत्पन्न ज्यादा होता है और कैविटी सड़न ज्यादा पैदा होती है और मसूड़ों की बीमारी होती है। और तीसरी बात मैंने जो बताया था कि सिगरेट का उपयोग नहीं करना है। सिगरेट अपने को लगता है कि हम धुआं है अभी नहीं छूट रहा है, पर ये शरीर को दुष्प्रभाव आपके हृदय को करती है, आपके किडनी को करती है, आपके फेफड़ों को करती है, ये सब आपके निकोटीन का दुष्प्रभाव होता है जिसको कि हमें रोकना होता है। ये तो हम रोकने की बात कर रहे हैं, थोड़ा और बड़े हम होते हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग खान पान देखते हैं, और जो खान पान जो हमारे करते हैं उसके बाद में रात को सोने के पहले ब्रश हर एक व्यक्ति ने हर एक उम्र में करना चाहिए।
1: और आजकल जैसे खान पान में भी अपन देख ही रहे हैं कि बच्चा हो कि युवा हो भी, घर को बने हुए खाने की बजाय अधिकतर कोशिश यह करे कि बाहर को, कहीं मालूम कहीं है कि बाहर के जो दुकान ना पर जो भोजन मिला उनका ज्यादा स्वाददार लगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी दुष्प्रभाव तो हो गई होगा, तो उन भी किना तरीका से हमारा नुकसान पहुंचा है।
0: आप ये मान के चलो कि बाहर के जो भी भोज्य पदार्थ जो कि जिनमें हमें हमारे दांतों को, जबड़े को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है चबाने के लिए, हमारे शरीर में डालने के लिए, तो वो सीधे के सीधे हम लोग वैसे ही पेट के अंदर ले लेते हैं। जो भोज्य पदार्थ को जब हम चबाते नहीं हैं और वो पेट में चला जाता है, तो पेट में उसका जो डाइजेशन है, पेट में उसका जो अंतिम प्रकार तक का जो पदार्थ अपने शरीर को मिलना चाहिए, कई कई दिन तक पेट के अंदर ही सड़ा रहता है। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, यदि हम आधुनिक भोज्य पदार्थ खाते हैं तो 10 से 15 दिन तक उसको पूरा के पूरा खत्म होने में लगते हैं, जबकि हमारे भारतीय जीवन शैली के जो भोज्य पदार्थ हैं वो 8 घंटे 10 घंटे के अंदर हमारे इसमें पाच्य हो जाते हैं, भोजन को हम पचा लेते हैं। पर जो हम बाहर के विदेशी जंक फूड को हम खाते हैं उनमें जो कण होते हैं, पैदा होते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं, वो उसको पूरा पूरा खत्म करने में, पूरा पूरा शरीर को पाचन करने में, पाचन प्रक्रिया को खत्म करने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन तक आपके शरीर के अंदर ही वो सड़ता रहता है। ये अब अम्ल पैदा करता है न, आपके पेट को खराब करता है, साथ साथ आपके सांसों को दुर्गंध भी आती है, मसूड़े खराब करते हैं, और ये आपके पूरी सेहत को भी खराब करते हैं।
1: क्योंकि आजकल जैसे बच्चा ना कभी देखना मई रही कि बचपन से भी चॉकलेट ज्यादा खाए, मीठो ज्यादा खाए, तो असामा उनका दांत जो है आजकल बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा ना दांत पूरी तरह से खराब हो गया। अब वो खराब होना की वजह से भी ढंग से फिर दूसरा भोजन नहीं कर पाए, तो ऐसे करें ना ही उनको फिर विकास होना में भी कहीं ना कहीं समस्या हो, तो ये सब बात को तो भाई बहन ना अपना ध्यान रखना है। साथ साथ एक बात और, जैसे तमना ब्रश को, क्योंकि अपना कोशिश करनी है कि सोने से पहला भी अपना ब्रश करना ही है और घर का हर एक सदस्य का करना चाहिए, और नी तो खाना का बात कम से कम अपना कुल्लो तो करना ही है। अब इका बात कई समस्या सा हमारा भाई बहन ना है जिनका की जिका अपन कहा कि ठंडो गरम जब खाए तो उकमा उनका जिका सेंसिटिविटी अपन कहा तो वह समस्या अधिकतर सुनना में आए, तो असामा भी किन्हीं बात को ध्यान रख सकता है और कई को उपाय है।
0: ठंडा गरम जो लगता है खाने पीने में, ये इनेमल जो होता है दांत का सबसे बाहरी परत होता है, और ये इनेमल शरीर का सबसे कड़क पदार्थ होता है, इवन बोन से भी

0: होता है, उसके बावजूद भी हम इनेमल को घिस देते हैं गलत तरीके से ब्रश करने से। जब हम इनेमल जब घिस जाता है तो अंदर जो जीवित पदार्थ डेंटिन करके होता है, जिसके अंदर की खून की नलियां नली और सेंसेशंस होते हैं, इसलिए अपने को ठंडा गर्म लगता है। इसके बचाव के लिए तो यही है कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, जो कि कार्बोनेटेड पानी होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं ये सब इसके इनेमल को लेयर को ख़त्म करते हैं। और जैसे हम जो सॉफ्ट फूड खाते हैं उसके अंदर जो एसिड बनने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेजी से फैलती है, इसलिए इन भोज्य पदार्थों को हम लोगों ने दूर रहना चाहिए इन।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई ऐसा विशेष संदेश जो हमारा किसान भाई बहना या जो भी श्रोता सुन ही रहा है वे उन्हीं बात ना को ध्यान रखी सका?
0: हाँ, दांत के दर्द के साथ में हमने सबसे पहले यह देखना चाहिए कि यदि दांत का दर्द यदि बचाव कर सकते हैं तो उसके जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं पद्धति से उनको बचाव कर लो, क्योंकि जो प्राकृतिक दांत जो दिया है वो अमूल्य है बजाय कि किसी नकली दांत के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यह समस्या आजकल हर जगह अपना देखना में आई जा रही है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलन यो है कि कम शक्कर खाएं और खुलकर मुस्कुराएं। तब ना हमारा किसान भाई बिरना का, हमारा श्रोता भाई बिरना का इतनी अच्छी जानकारी दी, इकालिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बिनुन। अभी अपन ने डॉक्टर विनोद अंधारे से आधुनिक जीवन शैली में दंत चिकित्सा को कई महत्व हुए इका बारे में जानकारी सुनी। ने मंडी का भाव आई गया है तो मंडी का भाव बताई देवा। गऊ जी की आवक री 1208 क्विंटल, भाव रहो 2572 से 3125, ने मॉडल भाव रहो 2550 रुपया। सोयाबीन जी की आवक री 820 क्विंटल, भाव रहो 4000 से 7255, ने मॉडल भाव रहो 7045। मिर्ची जी की आवक री 4 क्विंटल, भाव रहो 9500 से 18000 और मॉडल भाव रहो 9500 रुपया। चना जी की आवक री 88 क्विंटल, भाव रहो 5000 से 8300, मॉडल भाव रहो 5200। बटला जी की आवक री 3 क्विंटल, भाव रहो 2350 से 2350, ने मॉडल भाव भी एको योज रहो। आगे की बात करा तो मूंग जी की आवक री 29 क्विंटल, भाव रहो 3000 से 7825 और मॉडल भाव रहो 4500। मक्का जी की आवक री 3 क्विंटल, भाव रहो 2300, एका मॉडल भाव और अधिकतम भाव भी यही रहा। तुअर की दाल जी की आवक री 16 क्विंटल, भाव रहो 4195 से 5850 और मॉडल भाव रहो 4195। डालर चना जी की आवक री 1672 क्विंटल, भाव रहो 3500 से 10100 और अधिक मॉडल भाव रहो 8460 रुपया। अमचूर जी की आवक री 16 क्विंटल, भाव रहो 5900, एक अधिकतम और मॉडल भाव भी यही रहो। राजमा जी की आवक री 70 क्विंटल, भाव रहो 4500 से 11280 और मॉडल भाव रहो 6700। ने अब सुनी लेवा यो लोकगीत जिखे गायो है भाई मान सिंह बोंदिया और साथी भाइयों ने, तो सुना यो लोकगीत।

अभी अपन ने मन सिंह बोंदिया ने साथी भैया उनको गायो यो लोकगीत सुनियो ने आज देखो सावन का महीनो चली रही हो, वैसे तो चातुर्मास में सभी उपवास व्रत रखे, तो असो कौन सो चीज अपन बनावा की या उपवास में भी चली जावे और लागे भी अच्छी, तो क्यों नहीं आज अपन बनावा कट्टू का आटा का पकोड़ा, जो कि घना स्वाददार भी लागे ने घना उपवास में भी काम आवे। तो इखे बनाने सारू अपना के लागे गो कट्टू को आटो एक कटोरी, आलू या तो तम कटिया हुआ भी बारीक बारीक ले सका हो या फिर उबलिया हुआ भी आलू ली सको हो, सेंधो नमक, काली मिर्ची पीसी हुई, हरी मिर्ची एक दो जो है बारीक कटी हुई, हरो धनियो अच्छे से तोड़ी ने धोई ने अच्छे से साफ करी ने ओके कतरी ने रखनो है, साथ ही एक छोटो सो अदरक को टुकड़ो जिखे अपन अच्छे से किसी ने रखी लेवा। तो ये तो हुई वो अपनो सामान ने अब अपना खे इखे बनाने सारू कई करनो है कि तपेली माए कद्दू कट्टू को जो आटो है ओके नाकनो है और ओ में अपना के पहला सबसे पहला सेंधो नमक थोड़ा सो स्वाद अनुसार अपना के जितो लागे उतो नाकी देनो है, फिर काली मिर्ची जो अपन ने पीसी हुई राखी है वो नाकी देवा काली मिर्ची को पाउडर, ओका बाद अपन में हरी मिर्ची जो कतरी ने राखी थी वह नाकी देवा, अदरक किसी हो वो नाकी देवा ना हरो धनियो

साफ करीने जो अपन ने रखियो तो वो भी इमें नाकी देवा। अब इनके सबके अपन अच्छी तरह से मिलाई लेवा। अब अपना के कई करना है कि अगर अपना अपन चावा तो अपना जो उबलिया हुआ आलू है वाह, या फिर अपना के जो कटिया हुआ आलू लेना है तो का सारू उनका फोतरा ना निकाली ने और फिर आलू के धोई के बारीक बारीक काटी लेवा, और उबलिया हुआ आलू है तो उनका भी अपना के फोतरा निकालना है, और फोतरा निकालने का बाद आलू के अच्छी तरह से मसली लेना है। जब आलू अच्छी तरह से मसली लांगा ओका बाद इना जो अपन ने पाउडर और ये सब बने ही ने रखियो है घोल ओ में अपना के एक है आलू के मिलाई देना है। अब धीरे धीरे अपना के पानी नहाकनो है, पानी नहाकी ने अपना के देखनो है कि ये ज़्यादा पतलो और ज़्यादा गाढ़ो नहीं होवे। बीज को जैसे अपन पकौड़ा भजिया बनावा पकौड़ा बनावा उसमें जैसे रहवे नहीं वसो अपना के एक है घोल रखनो है। थोड़ी देर बाद अब अपना के कई करनो है, कढ़ाई में मूंगफली को तेल नहाकनो है, और तुम चाहो तो एक घी में बन ही सकता है लेकिन मूंगफली को तेल फरियाली होवे है। एका सारू अपन मूंगफली का तेल के गरम कढ़ाई में गरम करी लेवांगा। जब गरम हुई जावेगो तो या तो तुम चम्मच से इन्हें घोल के थोड़ा थोड़ा छोटा भजिया का आकार में नहाके सको, या हाथ से नहाकी ने इनके अच्छा सुनहरी होने तक इनके तलना है। जब ये अच्छा सुनहरी हुई जावेगा तो इनके निकाली ने गरम गरम एक अपन या तो हरी चटनी का साथ खाई सकता हाँ, या दही का साथ एक अपन उपयोग में ली सका हाँ। तो बेहन या तो ही गई अपनी कट्टू का फरियाली आटा की बात ने देखो अब सुनी लेवा। जय हो बाबा महाकाल को यो गाणो जिखे गायो है पते सी परमार राही ने। तो सुना यो लोग।

बेणू, महाकाल बाबा की बात चली तो उज्जैन की नगरी में सावन का पहला सोमवार यानी आज का दिन भगवान श्री महाकालेश्वर की पहली सवारी को निकलनो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि राजाधिराज द्वारा अपनी प्रजा का प्रत्यक्ष हाल जानने सारू राशि अंदाज में नगर भ्रमण करने को यो एक अलौकिक उत्सव है। इना पावन अवसर यानी श्रावण सोमवार का दिन भगवान चंद्र भोलेश्वर स्वरूप पालकी माए विराजमान हुई ने अपना भक्त होनखे दर्शन देने सारू मंदिर से बाहर आवे है। पालकी परंपरागत मार्ग से होती हुई शिप्रा तट रामघाट पे आवे। यहाँ पे माँ शिप्रा का पवित्र पानी से बाबा को जलाभिषेक ने महाआरती करी जावे है। बेणोन, वसे तो दुनिया का साराज मंदिर माए भक्त भगवान का दर्शन सारू उनकी चौखट पे जावे, पर उज्जैन नगरी की यह अनूठी परंपरा है जहाँ पे भगवान खुद चलीने अपनी प्रजा का बीच आवे है। वहाँ को उत्साह देखते नहीं बने, दो ही मार्ग पे लाखों लोगों की संख्या माए श्रद्धालु हर हर महादेव जय महाकाल की आवाज़ से पूरी अवंती का नगरी के गुंजायमान करी देवे है। ने देखो, इतना बरसात का मौसम आए, अपन अपनों तो ध्यान रखा, अपना नाना नानी उनको ध्यान रखा, वसेज अपना जो पशुधन है उनको भी अपना खे ध्यान रखनो घनो जरूरी होवे। अपना जो ढोर ढंकर है, अपना गाय भैंस है, उनके बीमारी सीलन और मच्छर से बचानो जरूरी होवे है क्योंकि इना मौसम में संक्रमण घनी तेजी से फैले है। अपना पशु उनके स्वास्थ्य सुरक्षा सारू जरूरी होवे है कि पशुशाला की सफाई और सुरक्षा को ध्यान रखा। सुख उनकी जो अपन ढोर कोठो है, उनको जो फर्श है उनमें पशु हन जो जहाँ पे रह रिया है वहाँ पे वह जगह जो है वह सूखी होनी चाहिए। फर्श पे का ऊपर सीलन नहीं होना चाहिए। ओखे रोकने सारू अपन चूना को पाउडर ओका पे छिड़की सका हाँ, और साथ ही सूखी घास या भूसो भी बिछाई सका हाँ। तो बेणोन, अब तमसे विदा लेने को समय आयो है, तो अपनी बेणोन से ला विदा ने केवा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि

हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कारपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे
बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह

करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासेरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किन्तु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉ संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम

है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएमयूएसपी योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुने कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर

0: अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
2: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम्स से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउ माई एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
1: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं और स्टेटिस्टिक्स के बाद, जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास या हाल का भी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको देखें तो ये पहली बार है कि जो खेल है काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
2: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में और फिर उन्होंने मना कर दिया था और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहां पर जहां हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए। और मैंने इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
1: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा। हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है। तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कौन से वो बॉक्सर्स है जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
2: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहां पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेट लिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है। जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
1: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
2: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बाउट जीतने पड़ेंगे और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेटलिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आए, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है। लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
1: जी आप क्योंकि वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेट लिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू उनकी बात ना हो तो

0: तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार हैं। और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेटलिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है? वेट लिफ्टिंग की बात करें,
1: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है। मुझे लगता है मुत्तुपांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका। लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है, वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने। अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है। लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स से, ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
0: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं। बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है। पर उनके अलावा अगर हम बात करें, कई ऐसी अचीवमेंट से कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में, जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
1: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्वी शंकर डिकैथलॉन में। ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल आए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्वी शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप। लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में, और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
0: बिल्कुल,
1: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो पीएचडी की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है, तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना, और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
0: आपने पैरा एथलीट्स की बात की, तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया। तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं, और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
1: बहुत सारे खेल हैं, पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है, वहां और मेडल्स आ सकते हैं। पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए, पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है। तो बहुत सारे खेल है, व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते। तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट, और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो, जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में। विमेन शॉटपुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
0: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें, देश की जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर

0: मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में कि जूडो को आगे बढ़ाया गया। और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन अकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
0: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो मां बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके 2 मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्विन शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है। हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है या जैवलिन थ्रोअर पे होती है। ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है। सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ।
1: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे। हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे। उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
1: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
0: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे। पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से। तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने ही घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
1: जी राजा रमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। बाबा महाकाल की प्रथम शाही सवारी उज्जैन में निकाली गई है। इसका आंखों देखा हाल हम आपको सुनवा रहे हैं सुदर्शन आयचित के द्वारा। तो आइए सुनते हैं बाबा महाकाल की प्रथम शाही सवारी का आंखों देखा हाल।
1: नमस्कार, मैं सुदर्शन आयचित आप सभी के लिए इंदौर आकाशवाणी के माध्यम से बाबा महाकाल की प्रथम सवारी का सजीव प्रसारण लेकर के आया हूँ। बाबा महाकाल की श्रावण मास की पहली सवारी बड़े ही धूमधाम के साथ निकलने जा रही है।

0: बाबा मन महेश के रूप में रजत पालकी में विराजित होकर अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं और सर्वप्रथम मुखोटों का पूजन सभा मंडप में शासकीय पुजारी जी द्वारा घनश्याम पुजारी जी द्वारा करवाया जा रहा है और उसके पश्चात भगवान को रजत पालकी में लेकर के मुख्य द्वार तक लाया जाएगा, जहां पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें राजसी रूप में, क्योंकि वे महाकाल राजा हैं, हमारे उज्जैनी के राजा हैं, तो उन्हें सलामी दी जाएगी। और बैंड की धुन आपको यहाँ बताना चाहूँगा, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अपना स्वयं का एक बैंड तैयार कर लिया गया है, जो कि भजनों की धुन बजाता हुआ पूरे सवारी मार्ग पर सवारी के साथ चलेगा। साथ ही पुलिस बैंड आगे कड़ाबीन अपनी आवाज करते हुए, जय घोष करते हुए कि बाबा महाकाल आ रहे हैं, चारों ओर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था दर्शनार्थियों द्वारा की गई है। दोनों ओर बैरिकेड्स बहुत सुंदर लगाए गए हैं और जहां एक विशेष आभा आज इस उज्जैनी की प्रतीत होती है, शनि शनि बाबा की पालकी मुख्य चौराहे पर आ रही है। आगे आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगोली कलाकार श्री कुंज बिहारी पंड्या अपनी सेवा स्वरूप रंगोली का निर्माण करते हुए, भव्य रंगोली का निर्माण करते हुए चल रहे हैं। आगे आगे जल का छिड़काव हो रहा है, चांदी की झाड़ू से भगवान के रास्ते को बुआरा जा रहा है। साथ ही अब धीरे धीरे पालकी बख्शी बाजार की ओर मुड़ रही है और बख्शी बाजार के वहाँ असंख्य श्रद्धालु भजन मंडलियां जय घोष करते हुए आ रही है, पालकी बाबा महाकाल की, ऐसा जय घोष करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शनि शनि पालकी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए और सीधे राम घाट का यह सुंदर दृश्य, जहां की एक नवाचार माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुरूप 1100 बटुकों द्वारा यहाँ पर वेदोच्चार मंत्रोच्चार किया जा रहा है और बाबा का पूजन अर्चन यहाँ पर हो रहा है। बाबा के पूजन अर्चन के पश्चात बाबा की पालकी यहाँ से हरि और हर के मिलन यानी गोपाल मंदिर की ओर अग्रसर होगी। एक विशेष बात मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगामी सिंहस्थ के लिए उज्जैन को एक नवीन उज्जैन बनाने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में जिस मार्ग से बाबा की सवारी, प्रथम सवारी इस वर्ष निकलने वाली है, वो पूरा मार्ग चौड़ा हो चुका है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा, नगर निगम की सम्मानित सभापति आदरणीय कलावती यादव जी का मार्गदर्शन, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी का मार्गदर्शन और उज्जैन के ऊर्जा एवं जुझारू जिलाधीश श्री रोशन कुमार सिंह साहब, आदरणीय संभाग आयुक्त आशीष सिंह साहब, साथ ही नगर निगम के आयुक्त IAS अभिलाष मिश्रा जी की अथक मेहनत और सभी आला अधिकारी आयुक्त उपायुक्तों की मेहनत के माध्यम से वह सड़क, वो जो चौड़ा सड़क बन गया है, इतना सुंदर उसको बना दिया गया है। कमरी मार्ग पर एक पुष्प रूपी आकार पत्थरों से दिया गया है, चारों ओर खुला सा नजारा और खूब अद्भुत, पहली सवारी का ऐसा अद्भुत नजारा है। और कमरी मार्ग के सामने से होते हुए पालकी गोपाल मंदिर की ओर मुड़ रही है और गोपाल मंदिर की ओर मुड़ते हुए छतरी चौक से गोपाल मंदिर की ओर अग्रसर होते हुए यहाँ पर गोपाल मंदिर पर सिंधिया परिवार की ओर से जो परंपरा है आरती की, वह आरती वहाँ के पुजारी द्वारा की जाएगी। भगवान का हरि और हर का मिलन हुआ और वहाँ से आगे सराफा बाजार के सामने से होती हुई सवारी पुनः महाकाल महाराज के आंगन की ओर समय से पूर्व वहाँ आ चुकी है और भगवान महाकाल ने अपनी पहली सवारी में सभी भक्तों के कष्टों को हरा और सभी को सुखद आशीष दिया। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम बाबा को देखें ये जरूरी नहीं है, महाकाल महाराज हमको देखें ये ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने वाले सभी सुधि श्रोताओं को मैं निवेदन करूँगा कि हाथ जोड़कर आँख बंद कर कर आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें और बाबा महाकाल से प्रार्थना करें तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। इति शुभम, जय श्री महाकाल।
1: अभी आपने सुना उज्जैन में बाबा महाकाल की प्रथम शाही सवारी का आंखों देखा हाल।

0: आइए सुनते हैं बाबा महाकाल की प्रथम शाही सवारी का आंखों देखा हाल।
1: आकाशवाणी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच परम शिव भक्त और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी जी हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री रवि सोलंकी जी आज से ही नहीं, कई सालों से, बाल्यावस्था से देख कह सकता हूं मैं कि बाबा के प्रिय रहे हैं। और पूरी सवारी में भजन गाते हुए, डमरू बजाते हुए आप चल रहे थे। आप बताएं कैसा स्वरूप रहा आज पहली सवारी का?
2: जय श्री महाकाल। अवंतिकायाम वीतावतारम मुक्ति प्रदानाय सज्जनानम अकाल मृत्यु परिलक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। मृत्युंजय के देवा देवता राजा धीराज महाकाल महाराज आज अपनी रजत जड़ित पालकी के अंदर विराजमान होकर नगर भ्रमण पे निकले थे, जहाँ देश और विदेश के कोने कोने से आने वाले सनातनियों ने उनके दर्शन करे और आशीर्वाद प्राप्त किया। जब पालकी ढावा रोड पे पहुंची तो लोग वहाँ जो खड़े थे वो डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि जो तंग गलियाँ थी उसको इतना चौड़ा रोड कर दिया। आज उस पहली बार उस चौड़े रोड के ऊपर ढावा रोड का पूरा रोड हमारा टंकी चौराहे तक का एक पार्ट, जिस पे आज बाबा महाकाल के जो परंपरागत मार्ग था उसको चौड़ा इज्जत समय के ऊपर करके डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त कर रही थी सनातनी जनता। इसलिए आप भी आइए उज्जैन में, बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए और अपने पुण्य प्रताप को प्राप्त कीजिए। जय श्री महाकाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रवि सोलंकी जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष। आप सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो स्वरूप था वो अपने आप में अद्भुत था, अकल्पनीय था और

0: सकते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुरूप आगामी सवारियों में भी आपको नित नए नवाचार देखने को मिलेंगे। जहां एक और जनजातीय दलों का नृत्य होगा तो 84 महादेव की झांकी। तो हम आप सभी को आकाशवाणी के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाकाल की सवारी में शामिल हों, और जो शामिल न हो सके वे सजीव प्रसारण के माध्यम से घर बैठे बाबा महाकाल की सवारी का आनंद लें। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय श्री महाकाल। अंत में यही कहूंगा कि मैं शिप्रा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मृत्यु भी मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। सौभाग्यशाली दिवस बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पर हमारे बीच उज्जैन जिले के कर्मठ जुझारू और कह सकते हैं कि हमेशा बाबा के श्री चरणों में अपने मन को लगाने वाले ऐसे सम्मानित प्रभारी मंत्री महोदय हमारे साथ हैं, आदरणीय टेटवाल जी। मैं निवेदन करूंगा कि बाबा की प्रथम सवारी पर जो व्यवस्थाएं और जो बाबा का दर्शन आपने किया उस विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी आकाशवाणी के मित्रों को दें।
1: आज सावन की प्रथम सवारी बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों ने बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन किए। मैं ऐसा मानता हूँ कि 3-4 लाख से ज़्यादा संख्या उज्जैन में होगी, और उज्जैन प्रशासन, महाकाल मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और विद्युत विभाग जो सवारी में लगे रहे उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। उज्जैन महानगर के सभी भक्तजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब बाबा महाकाल की सवारी, जब बाबा महाकाल प्रजा मंडल से दर्शन देने और प्रजा के हालचाल जानने आते हैं तो प्रजा के लाखों नर नारी महाकाल सवारी स्थल पर सवारी मार्ग में बढ़िया सड़कों को साफ करके, सड़कों को पानी से धो करके और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, इत्र के साथ में बाबा महाकाल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाहर से आए हुए सभी नर नारियों का भी अभिनंदन करते हैं। सौभाग्यशाली हैं उज्जैन के निवासी और सौभाग्यशाली आपकी सुदर्शन चक्र। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को भी और उज्जैन वासियों को भी, और जो दर्शनार्थियों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं बाबा का सेवक होने के नाते क्षमा प्रार्थी हूँ और अच्छी से अच्छी सुविधाएं आपको दे पाएंगे। आज बाबा महाकाल आप सभी नर नारियों की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए महाकाल हमारा जिनकी।
0: माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो नज़रिया है नवाचार करने का, जैसे आज भी 1100 बटुकों ने बाबा महाकाल के श्री चरणों में वेदोच्चार किया और एक नए मार्ग से जो सवारी निकली है उसके लिए मैं चाहूँगा कि आकाशवाणी के जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, क्योंकि वो आ नहीं पाए, वो घर बैठ करके ही आपके माध्यम से ऐसा महसूस करेंगे कि वो सवारी में चल रहे हैं, तो वो मार्ग जो बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया, जो आगामी सिंहस्थ के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़रिया है कि स्वर्णिम सिंहस्थ हो, सुगम सिंहस्थ हो और उज्जैनी स्वर्णिम उज्जैनी बन के तैयार हो, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि पहले बार
1: हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाकाल के आंगन में, महाकाल की गोद में खेल कर बड़े हुए, माँ शिप्रा जी के पावन तीर्थ पर उनका जन्म हुआ और वो ऐसा चाहते भी हैं कि महाकाल लोक की ख्याति देश और दुनिया में तो है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में

0: अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और

0: शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister DK Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJ

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म साथी से। संगीतबद्ध किया था नौशाद ने और गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, ओटीपी का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117

0: 7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम 3 तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी है? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है
0: जी।
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है
0: जी। बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए 3 रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: 3 रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए
0: जी,
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि 2 चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारण वर्ष है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास 2 विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
0: जी,
1: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से।

0: कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930-1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए। बहुत इफेक्टिव है, और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी।
2: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझे कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन एप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा, और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है, और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है, अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
3: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
3: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है?
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर

0: इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत शक्की हो जाइए, दूसरी आदत कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशन होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है,
1: खास
0: सर वे ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ, जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ पड़ता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट के अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि सर किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये।
0: देखिए बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इस कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो यह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
4: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
4: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
4: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
4: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
4: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए, तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि साहब बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहां पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फोन होता है, फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां

0: वो नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक
1: में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: जी मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाए, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहे और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व तो बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीजरीज है, उनका दायित्व तो बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व तो उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, ये है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
3: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा

0: होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है, और डुप्लीकेट सिम आप बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इश्यू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
2: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारण, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन के सभी श्रोताओं को प्रीति उपासनी का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आप सभी के पसंद के इस गीत से। फिल्म का नाम है वारिस।

लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में ये गीत था फिल्म वारिस से। संगीतबद्ध किया था उत्तम जगदीश ने और गीत के बोल लिखे थे

वर्मा मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहा था इंदौर से प्रेमेंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश, कामिनी चौहान, मंजू चौहान, सिद्धार्थ, गौरव और इनके परिवार के सभी सदस्य। करताल जिला रंगातेड़ी तेलंगाना से गोपाल कानूगुला, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश ने। चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। बड़गांव खरगोन से योगेंद्र रावल, राजेंद्र रावल, सीलू, रामलाल यादव, सुमित, विक्की, पुष्प अम्बेडकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा, निधीश, परिधि, मायरा और इनके परिवार के सभी सदस्य।

जगजीत सिंह के आवाज़ में ये गीत था फिल्म सरफरोश से। संगीत दिया था जतिन ललित ने और शब्द रचना थी निदा फाजली की। इस गीत को सुनना चाहा था बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, आदित्य अदिति और मीनू शिमाली ने। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिमी, अमिता दियाना, जियांश मटाई ने। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। रंथभवर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, रूबी नाबी मॉरिस, मुकेश नारोलिया, मान्यता हसन भाई, अकबर जानकी लाल वर्मा और न्याज भाटिया ने। धार रोड इंदौर से चांदमारी इटभट्टा से राजेश चाल से, भारती चाल से, योगेश्वरी यंशिका और रुद्र चाल से। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने।

श्रोताओं, ये गीत था फिल्म नगीना से। आवाज़ थी मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को सुनना चाहा था महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल। ग्राम बनभगेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमाली अंजलि सारवा, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामोरिया। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम तिवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छैगांव देवी, जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और गुलफ राज भागलपुरी। आइए अब सुनिए अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत था फिल्म कश्मीर की कली से। संगीत पथक किया था ओपी नैयर ने और शब्द रचना थी एसएच बिहारी की। इस गीत को सुनना चाहा था कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेदम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद रजिया, जुनैद अलीना, मुआज और आयत। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। वारणा शाहपुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, गुंडिया पांड्या, माई चौहान और करिश्मा चौहान, डॉक्टर सूरज सर्वे और नमिता प्रकाश सुर्वे ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म याराना सी। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे थे अनजान ने। इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने भी। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे ने। सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो, मोहम्मद आरिश। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। जामरुन तालुका अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशीष पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और गणेश हरगांवकर ने। वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत ने। इसी के साथ मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रीति उपासनी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गौरी पठारे का गायन, रागों का नंद, तबला संगत की है अभय दातार ने।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गौरी पठारे का गाया राग नंद। तबला संगत अभय दातार की थी। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल

0: आर मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,100